आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 12 मई सन 2025। सुबह के 5:58 और 45 सेकंड हो चुके हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में गए, वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और

0: और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं समूह स्वर में मातृवंदना।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में मातृवंदना। रचना वीरेंद्र मिश्रा की थी, संगीत सतीश भाटिया का। अर्चना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण की आवास में चंद्रशेखर पांडे की ये गणेश वंदना। संगीत श्याम सागर का है।

हरिओम शरण और साथियों की आवाज़ों में चंद्रशेखर पांडे की गणेश वंदना भी आप सुन रहे थे। अर्चना कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं साधना सरगम की आवाज़ में डॉक्टर अजय प्रसून की ये भक्ति रचना। संगीत उत्तम चटर्जी का है।

साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में डॉक्टर अजय प्रसून की भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे। अर्चना कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं पीयूष नागर और दर्शना पोता की आवाज़ों में सुरेंद्र ठाकर मेहुल की ये भक्ति रचना। संगीत अशित देसाई का है।

पीयूष नागर और दर्शना पोता की आवाजों में सुरेन ठाकर मेहुल की ये भक्ति रचना भी आप सुन रहे थे। संगीत अशित देसाई का था। इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:25 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको जानकारी देते हैं आज दिन भर के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में यानी 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम होगा 6:40 से। संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे 6:55 पर और सुबह 7 होगा रोजाना का क्रम सुबह सुबह। कृषि संकेत का वक्त होगा 7:05। प्रादेशिक समाचार होंगे भोपाल केंद्र से 7:10 पर। 7:20 पर सुनिएगा मन चाहे गीत। संगीत सरिता कार्यक्रम 7:45 से। दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात 8 से 8:15 पर लोक संगीत। पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर ये कार्यक्रम सुना जा सकता है 8:30 से। 8:45 पर चित्रपट संगीत और 9 से होंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 10 होगी भोपाल से जिले की चिट्ठी और 10:05 पर कार्यक्रम राग रागनी। आपकी पसंद कार्यक्रम 10:30 से सुना जा सकता है। 11 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। 11:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम दोपहर 2 से, प्रादेशिक समाचार 2:10 से और दोपहर समाचार 2:15 से। 2:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। सुबह 11 सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी शाम 5:02 से। संगीत सरिता कार्यक्रम होगा 5:30 से। सदाबहार गीत 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम 6

कर 45 मिनट से 7:20 पर होगा खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 बजे चित्रपट संगीत संगीत सरिता 8:15 पर और 8:30 पर होगा काव्य पाठ, रचनाकार शैलेंद्र चढ़िया। 9 बजे से होंगे मनचाहे गीत, 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से होंगे। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर और 11:10 पर हमारा आज का प्रसारण समाप्त होगा। तो ये थी जानकारी आज दिन भर के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी सागर है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

शूद्र वंश में जन्मे काकभुशुंडी को, जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आ बसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते, किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं। उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया, तो शूद्रवंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरुद्रोह करना आरंभ कर दिया। किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है, तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू हो जाता है जिसने उसे बड़ाई दी है। एक दिन जब ये मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, गुरुजी वहां आ पहुंचे। मदांध शिव भक्त ने उनकी अनदेखी ही नहीं की, अपितु अनादर भावना से अजगर की भांति बैठे रहे। द्विज तो उदार और महामना थे, किंतु स्वयं भगवान शिव को गुरु का ये अनादर और अपमान सहन न हुआ। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें शाप दे डाला। हे गुरुद्रोही, तू गुरु और मेरा मंत्र देने वाले को देखकर भी इस प्रकार अजगर की भांति बैठा है, जा तू अजगर हो जा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत हैं भूले बिसरे गीत।

0: जीनत बेगम की आवाज में पगडंडी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत खुर्शीद अनवर का था, गीत डीएन मधोक का।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत, गीत है मजरूह का, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

नाच उठा संसार। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में ये गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं काजल फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीत साहिर लुधियानवी का है, संगीत रवि का।

0: काजल फिल्म के इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी सागर है, अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: अथ वार्ताः। पश्चिम एशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पंच देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्री मोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं संप्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमंत्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक

FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है रोजाना का क्रम सुबह सुबह। ये कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओ, अपने सामान्य दिनों में अपने सामान्य क्रियाकलापों के बीच कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते हैं और ये विचार हमें पूरी तरह से घेर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए, हम जो कर रहे हैं ऐसा ना हो कि उसमें बुरी तरह से असफल हो जाएं, हमारे किसी प्रियजन के साथ कोई अनिष्ट ना हो जाए। ये और इसी तरह के न जाने कितने डरावने विचारों के बीच हम एक विचित्र सी स्थिति में अपने आप को पाते हैं। फिर उस समय की कुछ भौतिक स्थितियां या कहें कि प्राकृत वास्तविक कठिनाइयां कई गुना बढ़ जाती हैं और फिर हम एक ऐसी खोह में फंस जाते हैं जहां से निकलने का रास्ता हमें नहीं दिखता। हमें लगता है कि जीवन अब कैसे आगे बढ़ेगा, अब हम क्या करें। श्रोताओ, जब भी इस तरह के विचारों से हमारा सामना होता है उस समय हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये विचार, ये नकारात्मकता हमारे ही दिमाग की उपज है जिसके मूल में हमारी चाही अनचाही इच्छाएं, तरह तरह की आशंकाएं, अपनों के प्रति हमारा लगाव, हमारा मानवीय स्वभाव, ये सारे तथ्य इसमें शामिल हैं। और सबसे जरूरी बात उस वक्त की हमारी मानसिक स्थिति। श्रोताओं, प्रसन्न रहना, खुश रहना, दुखी रहना, उदास रहना, ये बहुत हद तक हमारे हाथ में ही है, क्योंकि हमने पहले जिस तरह की नकारात्मकता की बात की है वे वास्तव में अभी हमारे सामने नहीं है। हाँ, इनके सामने आने की गुंजाइश जरूर है, लेकिन ऐसी तो फिर असंख्य आशंकाएं हैं या हो सकती हैं। और अगर अपनी कल्पना शक्ति से हम उनसे भयाक्रांत होने लगेंगे तो फिर तो जीवन बहुत बोझिल हो जाएगा, जबकि उसी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके हम इसी तरह

अनगिनत सुखद क्षणों या स्थितियों को भी गढ़ सकते हैं और असंख्य सुखद सपने संजो सकते हैं। उन्हें अपने आज में शामिल करके अपने वर्तमान को खुशनुमा बना सकते हैं। श्रोताओं, हमने कई दार्शनिकों और विचारों के बारे में जाना है, उनको पढ़ा है, उनकी बेशकीमती देशनाएं भी इसी ओर इशारा करती हैं कि खुश रहना हमारे दिमाग की एक स्थिति है जिसे हम खुद नियंत्रित करते हैं या कर सकते हैं। इसका बाहरी कारकों से बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता है, तो क्यों ना हम इस तथ्य का सिरा पकड़कर खुश रहने के जतन करें, क्योंकि ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि खुश रहना हमारा स्वभाव है।

अभी आप सुन रहे थे रोजाना का क्रम सुबह सुबह FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

0: एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि संकेत।
1: नमस्कार किसान भाइयों, खेती जब हम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें बीज उपचार करते हैं, फिर बीज उपचार करने के बाद हम उर्वरक पर ध्यान देते हैं और हम उसकी बुआई करते हैं। तो बीज उपचार किससे करते हैं, जैसे फफूंदनाशक दवाओं से बीज उपचार हो गया या कीटनाशक दवा से उपचार हो गया, उसके बाद में हमारा जैव उर्वरक की बात आती है। जैव उर्वरक से बीज उपचार किया जाता है। तो किसान भाई ये सोचते होंगे जैव उर्वरक से जब हम बीज उपचार कर रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर हम इनसे बीज उपचार कर देते हैं तो जो रासायनिक उर्वरक हम कम मात्रा में डाल रहे हैं उनसे ये पर्याप्त मात्रा में उनकी पूर्ति हो जाती है। जैसे कि राइजोबियम कल्चर जो है वो दलहनी फसलों के लिए उपयोग में आता है, और अगर हम राइजोबियम कल्चर से बीज का उपचार कर देते हैं तो नत्रजन की मात्रा अगर रासायनिक उर्वरक के माध्यम से हम कम दे रहे हैं तो भी ये जो जैव उर्वरक से हमने बीज उपचार किया है इनकी जड़ों में बहुतायत में गांठें बनेंगी और वातावरण में उपलब्ध नत्रजन की मात्रा जो है वो पौधों को उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह पीएसवी कल्चर जो होता है ये फास्फोरस को घुलनशील बनाता है। फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए इसलिए महत्व बहुत ज़्यादा है कि जो हम फास्फोरक उर्वरक रासायनिक फर्टिलाइजर के माध्यम से देते हैं उसकी बहुत सारी मात्रा भूमि में वैसे ही पड़ी रह जाती है जो घुलनशील नहीं होता है, और पौधे हमेशा घुलनशील पोषक तत्वों को ही अपने उपयोग में लेते हैं तो ये उसमें पड़ा रह जाता है। इसी तरह कभी हम पोटाश के उर्वरक नहीं दे पा रहे हैं या फिर हम जिंक की मात्रा नहीं डाल पा रहे हैं तो आजकल बाजार में बायो कैप्सूल उर्वरक उपलब्ध हो चुके हैं जो एक कैप्सूल के रूप में उपलब्ध हैं, और एक कैप्सूल मात्र 1 ग्राम का कैप्सूल होता है। तो जहां हम 1 किलो या 1 लीटर बायो फर्टिलाइजर ले रहे हैं या और मात्रा अपनी आवश्यकता अनुसार हमारी जितनी खेती है हम उसके अनुसार ले रहे हैं तो उसी हिसाब से हम 1 एकड़ खेत के लिए 2 कैप्सूल हमें पर्याप्त हो जाता है, या फिर हम अपनी मृदा की जांच करा लें उस आधार पे उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है उनके अनुसार हम इनको ले सकते हैं। तो ये कैप्सूल जो बाजार में है, एसिटोबैक्टर कैप्सूल है, एजिक्टोबैक्टर कैप्सूल है, NPK कैप्सूल है, फॉस्फोरस कैप्सूल है, राइजोबियम कैप्सूल है, पोटाश कैप्सूल है और जिंक कैप्सूल, तो इनका कार्य क्या है, जो भी पोषक तत्व कम है वो इनको भूमि में उपलब्ध कराते हैं, और या फिर हम उनसे बीज उपचार कर सकते हैं या खड़ी फसल में हम छिड़काव कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन बनाया या घोल बनाया और घोल बनाने के बाद हम इसको कर सकते हैं ना, या जिंक कैप्सूल ले लें तो वो जिंक की उपलब्धता को बढ़ाएगा, पोटाश ले लें तो पोटाश की मात्रा को बढ़ाएगा, NPK कैप्सूल हैं तो तीनों चीज़ें हमारे नत्रजन जो फिक्स करते हैं वो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हमें मिल जाएंगे भूमि में, साथ में फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले सूक्ष्म जीवाणु हो जाएंगे, पोटाश

0: स्पर्श की उपलब्धता कराने वाले सूक्ष्म जीवाणु हो जाएंगे। इसी तरह फास्फोरस अलग से इसका कैप्सूल है, जो फास्फोरस के साथ साथ मिट्टी में मैग्नीज है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, इनकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं, प्रक्रिया में इस्तेमाल होती हैं, या फिर हमारी बीमारी से लड़ने में सहायता करती हैं, या कभी जैसे सूखा पड़ गया, पौधे बहुत तनाव की कंडीशन में हैं, तो उनकी सहन शक्ति है ये बढ़ जाती है। तो जैव उर्वरकों का हमारे उसमें बहुत महत्व है। तो हम अगर पाउडर फॉर्म में नहीं ले पा रहे हैं या तरल रूप में नहीं ले पा रहे हैं, तो हम ये कोशिश करें कि हम ये कैप्सूल के रूप में जो उपलब्ध हैं, विभिन्न संस्थाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं या कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं, हम उनको लेकर के इसको उपयोग में कर सकते हैं। और ये बहुत सस्ते हैं, लाने में आसानी है, रखने में आसानी है, और इनका छिड़काव भी बहुत आसान है। साथ ही इनको हम काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, जिससे ये खराब भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों इनके उपयोग को लें, जिससे हमारी मृदा संरचना में सुधार हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, और पौधों को पोषक तत्व भी आसानी से मिले, और हम रासायनिक खाद के ऊपर कम निर्भर रहें।
1: बायो कैप्सूल विषय पर अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। यह आकाशवाणी सागर है, FM बैंड 102.6 MHz पर। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज, जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश में निवेश पर होगा मंथन। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और प्रदेश में योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज से शुरू हो रहा है हर घर योग अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नागरिकों से राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाकर प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह भी किया। इससे पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक के आयात में कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ चार मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से दो भाजपा और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। ये असम में एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि

0: हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं।
0: भोपाल में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक, तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से हर घर योग अभियान शुरू हो रहा है। अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10-15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल एक बयान में कहा कि प्रदेशवासियों को योग से जोड़ने के लिए 21 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल के मास्टर ट्रेनर स्टूडियो से 45 मिनट के लाइव योग सेशन आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर घर और जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए मिलकर योग अभ्यास करने और निरोग रहने की अपील की है। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के परीक्षण के लिए 15,598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। शहरी और नगरी मार्गों के नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6,900 करोड़ रुपए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बुधनी में MBBS, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 763 करोड़ 40 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नीमच जिले की खुमान सिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इंदौर जिले में फार्मर रजिस्ट्री सिचुएशन अभियान को 20 मई तक पूरा करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य केंद्र शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। फार्मर आईडी के अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमि स्वामी को यूनिक आईडी प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। भोपाल में 15 मई से आयोजित होने जा रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलिया जूनियर टीमें कल भोपाल पहुंची। राजा भोज एयरपोर्ट पर दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 20 मई 2026 तक भोपाल स्थित उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में आयोजित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव आज। इंदौर के 10,537 अधिवक्ता मतदाताओं का करेंगे प्रयोग। सतना जिले के नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के

आंदोलन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। संस्कृति राज्य मंत्री और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी आज खंडवा दौरे पर रहेंगे। वे जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिवनी जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और संबंधित प्रारंभिक सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के ग्राम डोकरपुरा में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 35 बीघा बहुमूल्य शासकीय गोचर भूमि को मुक्त कराया गया। विदिशा जिले में उर्वरक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 50% की जरूरत वाली पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान ई पोर्टल के माध्यम से अपनी जरूरत का 100% खाद एक बार में उठा सकेंगे। मंडला पुलिस द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनपुर में बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। राजगढ़ में आयोजित समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जल गंगा संवर्धन अभियान, ई ऑफिस, आधार निर्माण, ई केवाईसी, सार्थक अटेंडेंस और समय सीमा के प्रकरणों की स्थिति पर विभागवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायसेन में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। और ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आगरमालवा जिले में 31 मई तक जिला मुख्यालय सहित सभी विकास खंडों में किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 7:20 हो चुके हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन चाहे गीत। ये कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मनोज सोनी का प्यार भरा नमस्कार।

लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत संगीत आनंद मिलिंद का था। इस गीत की फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई थी आप सभी की। निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर। इसी गीत की फरमाइश गांव खारिया ढांडी जिला सिरसा हरियाणा से प्राप्त हुई थी। ये व्हाट्सएप मैसेज लिखा आप सभी ने सतवीर सिंह विजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या और उनका पूरा परिवार। इसी गीत की फरमाइश प्राप्त हुई कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनल वर्मा की। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय।

कर अनवर सागर संगीत अनु मलिक कथा। इस गीत की फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई आप सभी से। मजनू का टिल्ला से कमल बालूचा, मधु बालूचा, सागर बालूचा और उनका परिवार, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, ग्राम पेपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र रौनक और उनका परिवार, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। मंचाहे गीत के कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमें भेजिए व्हाट्सएप पर आप सभी श्रोताओं ने। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से सुनना चाहते हैं राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल दिवंकन, कौशल्या, हेमलता, टिम्पल, बाबू प्रियांश और कुमारी भाव्या दिवंकन। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल नहावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला, आशीष और उनका पूरा परिवार। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं दामिनी फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत समीर का है, संगीत नदीम श्रवण का।

आइए अब सुनते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है हिना। आवाजें लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की हैं। संगीत है रविंद्र जैन का। इस गीत की फरमाइश हमसे की है, व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हुए बक्सर हिसार से शरफुद्दीन अंसारी, खातिमा खातून अंसारी, सुरीश और रमेश साहू। ये मैसेज प्राप्त हुआ बक्सर बिहार से। डुमराओं बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अतिबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और उनका परिवार। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। आप सभी की फरमाइश पर हिना फिल्म का ये गाना।

हिना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: शहजाद अहमद की लिखी गजल अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में। संगीत हरिहरन का था।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है

0: इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती GST दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में वाली आसी की ये गजल।

0: वालियासी की गजल भी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। इस गजल के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है, समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी।

0: श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
7: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए

0: उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है, और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।

0: लक्ष्मी त्रिपाठी से अभी आप सुन रहे थे ये विवाह गीत।
1: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
2: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
1: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
2: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।
0: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं दीपचंद आठिया और साथियों से ये गारी।

लोक संगीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं निरंजन कुमार शर्मा से ये लोक शैलीबद्ध हास्य गीत।

निरंजन कुमार शर्मा से अभी आप सुन रहे थे ये लोक शैलीबद्ध हास्य गीत। इसके साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। आज के गेस्ट हैं अनिल अहिरवार, फोटोग्राफर।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर इस कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और एक बेहद खास मेहमान को हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आप हैं अनिल अहिरवार जी, बिल्कुल युवा हैं और जोश से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत से लोगों के लिए एक स्वप्न सरीखा हो सकता है, एक ड्रीम जॉब या प्रोफेशन हो सकता है। आप पेशे से फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, और आप कैमरे से दुनिया को दिखाते हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी सर, नमस्ते।
1: हम आपके नजरिए से आज कैमरे को भी देखेंगे और वीडियो शूट या फोटो शूट, फोटो कैसे खराब हो सकता है, कैसे अच्छा हो जाता है थोड़ी सी कलाकारी कर देने से। एक जो कैमरे के पीछे का जो व्यक्ति होता है, माहिर होता है फोटो खींचने में, बारीकियों को जानता है, वो कैसे किसी तस्वीर को खूबसूरत बना सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हुए आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि फोटोग्राफी के प्रति या कैमरे से आपकी दोस्ती कब हुई, कैसे रुझान हुआ आपका इस प्रोफेशन में, इस कैरियर में?
2: सर, मेरा कैमरे से दोस्ती से ऐसे हुई, मेरे भैया ने एक कैमरा लिया था जो घर में रखा रहता था। अब जब सुबह में उठते तो उस पर नज़र पड़ती थी कि भाई इस कैमरे में ऐसा क्या है, रखा रहता है, यूज़ नहीं होता, इस कैमरे के अंदर क्या होता होगा, ये फोटो कैसे क्लिक करता होगा, ये कैसे फोटो बनाता होगा। तो तब मैंने भैया से चुरा के कैमरा उठाया, और भैया नहीं थे तो मैं फ़ोटोज़ क्लिक करता था, तो मैं बोलता था इसमें कैसी गंदी सी फ़ोटो आ रही है। फिर मैं पूछ नहीं सकता था किसी से, क्योंकि मैंने तो ये चोरी करके, मतलब घर वालों से चुरा के ऐसे उठाया था। तो मैंने वो कैमरा चलाया तो उसमें मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं आया। उसके बाद फिर भैया ने एक बार शूट किया, और उसके बाद जो फ़ोटोज़ देखी तो वो फ़ोटो मेरी फ़ोटो से बेटर आई थी वो। तो मैंने कहा यार मैं कर रहा था तब तो नहीं हुआ, ये कैसे हुआ। फिर मैंने किसी से पूछा, भैया ये कैसे होता है, तो उन्होंने बताया ये ऐसे ऐसे होता है, इसकी थोड़ा ISO बढ़ाना पड़ता है, ये चीज़ें बढ़ानी पड़ती हैं, अपर्चर बढ़ाना पड़ता है, शटर स्पीड। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर भैया फिर नहीं थे एक दिन, तो फिर उस पर लिखा होता है ISO, शटर स्पीड। फिर मैंने वो चीज़ बढ़ा के देखी, फिर वो चीज़ मैंने की तो उस पर ऑटो मोड पर था कैमरा, उस पर लिखा होता है। फिर मैंने उसको M मोड पे लगा के देखा, फिर मुझे पता था कि M मतलब मैनुअल, अब हमें कैसे करना। उस पर मैंने फोटो खींची तो बिल्कुल फोटो वाइड वाइड, मैंने कहा मैंने क्या कर दिया कैमरे में, ख़राब तो नहीं कर दिया मैंने। फिर मैंने जैसा था A पे लगा के वापस जहीं के तहीं रख दिया, मतलब जैसे था वैसे ही रख दिया। फिर मैंने फिर पूछा एक भैया से, ऐसे ऐसे है भैया ये कैसे होता है, तो उन्होंने बताया बेटा दिन में होता है 5.6 अपर्चर, और स्पीड होती है 160 से 200 के बीच में, ISO अपन को कम रखना है कहीं पे भी हो, दिन का ये सेटिंग रखना है। तो वो चीज़ मैंने करके देखी, फोटो अच्छी आई। फिर मैंने ISO और बढ़ाया तो और अच्छी फोटो आई। फिर यही फोटो मैंने धूप में खींच दी तो फिर जल गई फोटो, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने उनको बताया भैया ऐसा ऐसा था, तो बोल रहे बेटा लाइट्स भी चाहिए पड़ती हैं। फिर मैंने लाइट के बारे में जाना। फिर हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी चल रही थी, तो उसमें भैया ने कैमरा ऑपरेट किया, वो फोटोज़ देखी। फिर दूसरे साल फिर से फंक्शन हुआ, तब मैं कैमरा लेके गया, भैया ने मुझे बोला था लेके रख देना मैं सब कुछ देख लूँगा। तब मैंने फ़ोटोशूट की, वो फोटोज़ मुझे अच्छे लगे, प्रिंट कराने गया तो उन्होंने ही बोला अच्छे फोटो खींचे, किसने फोटो खींचे। तब मेरा इंटरेस्ट एक लेवल बढ़ गया, तब मैंने सोचा था कि फोटोग्राफर बनूंगा, ऐसे सोचा बस था, अपना माइंडसेट नहीं किया था कि भाई अपना फ्यूचर ही फोटोग्राफर में कर लेंगे। फिर जब मैं 12th में आया तब मैंने एक रेंट से अच्छा थोड़ा सा बड़ा कैमरा लिया, क्योंकि जब वो बहुत लो बजट पे था, उस पे लाइट भी थी, वो फोटो बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी, मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं लेकिन सामने वाले के, भैया यार बहुत अच्छी फोटो खींचता है ये लड़का। तो ये फोटो खींचने के बाद फिर जब मैं 12th से बाहर निकल गया तो स्कूल वाले मुझे अभी भी बुलाते हैं कि भाई अनिल ही आएगा। हाँ। जो पहले फोटोग्राफर आता था तो वो बोलते थे हाँ अच्छी फोटो था, लेकिन अनिल नहीं, अनिल को ही चाहिए मुझे, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा भी हूँ और सबको पता है मेरा नेचर कैसा था। तो मैंने पास आउट तो 2021 में की थी स्कूल से, लेकिन स्कूल से मेरा नाता अभी भी नहीं टूटा है, स्कूल वाले मुझे अभी भी बुलाते हैं, और स्कूल वाले

0: सपोर्ट भी करते हैं टीचर्स लोग।
1: अनिल जी, फोटो खराब क्यों आती थी और क्या असर आपने उसमें डाला? क्योंकि कैमरा वही है, खींचने वाला फोटोग्राफर भी वही है, लेकिन तस्वीर खराब से अच्छी होती जा रही है, इसके पीछे का विज्ञान क्या था?
0: सर, इसके पीछे का विज्ञान तो ये था कि फोटो तो वही है, बट हमने क्या लाइट्स के बारे में नहीं जाना था, हमने ISO के बारे में नहीं जाना था, और पहले हम ऑटो पे करते थे, फिर मैनुअल पे चीजें हमें जैसी बनानी है हम वैसे बना सकते थे, तो क्या ऑब्जेक्ट बदल गया, मोड बदल गया, ऑटो से सीधा मैनुअल पे आ गए, और हमने क्या इंप्रूवमेंट कर दिया लाइट का। तो लाइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में अगर हम एक दिया भी जला देते हैं तो पूरा कमरा रोशनी भरा हो जाता है और सुंदर लगने लगता है, तो ऐसे लाइट्स का महत्व होता है। तो लाइट्स का बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता था, जब मैंने लाइट्स को ऐसे किया तो फोटो बहुत सुंदर आने लगी, तो मुझे पता चल गया भाई कि लाइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, और धूप में फोटो खींचता तो जलती थी, मैंने कहा यार लाइट्स यहाँ पे कैसे, यहाँ पे और लाइट मारेंगे तो और ज्यादा लाइट होगी, तब मुझे पता चला कि डायरेक्ट लाइट मारो, ISO कम रखो, शटर स्पीड ज्यादा कर लो, तो बिल्कुल धूप को भी काट देती है वो लाइट, तो लाइट्स का ये महत्व है।
1: तो किसी एक फोटोग्राफी में किस किस तरह की लाइट का प्रयोग करते हैं हम?
0: सर देखो, हम ऑक्टालाइट का यूज करते हैं, फ्लैश लाइट का यूज करते हैं, RGB लाइट होती है, LC लाइट होती है, बहुत सारी लाइट होती है। अब हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स वाली लाइट है कि कैमरे से महंगी महंगी लाइट्स हैं। जो कैमरा मैंने पहले चलाया था वो कैमरा सिर्फ मैंने 7000 का लिया था, और अगर अभी की डेट में बात करें तो जो मेरे पास लाइट्स है ना, तो वो लाइट्स मेरे पास 37000 वाली है, सिर्फ एक लाइट्स। तो मैं ये सोचता था कि भाई, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी महंगी भी लाइट्स ले सकता हूँ, बाकी उस लाइट से इतनी प्यारी फोटोज आती है ना, तो आप देखेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छी लगेंगी।
1: अनिल जी, आर्टिफिशियल लाइट्स के अलावा यदि हम नेचुरल लाइट की बात करें, सनलाइट की बात करें
0: जी,
1: तो दिन का वो कौन सा समय होता है जो गोल्डन आवर माना जाता है, जिसमें फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा समझा जाता है?
0: सर, गोल्डन समय की बात करी जाए तो सुबह 5:30 बजे से 7:30-8 के बीच का समय बहुत प्यारा समय होता है, ना कि हास लाइट भी नहीं आती है, सनलाइट बहुत प्यारी आती है, और जो बिल्कुल हैवी लाइट नहीं आती है, और शाम में वही 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटा लाइट इतनी गोल्डन लाइट होती है ना सर, कि ये हमारे जो इक्विपमेंट्स इतनी महंगी महंगी लाइट्स हैं भी ना, जो हम 1-1 लाख वाली भी ले लेंगे ना, ये वो लाइट्स भी
1: नहीं पैदा कर,
0: वो नहीं दे पाएंगी।
1: यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग का जो समय होता है फोटोग्राफी के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है,
0: बहुत प्यारा।
1: दोपहर का जो समय होता है, जब सूर्य की किरणें थोड़ी तीखी होती हैं, खासकर गर्मियों के समय में, उस लाइट को इतना अच्छा क्यों नहीं माना जाता, जबकि उसमें लाइट तो बहुत भरपूर मात्रा में होती है?
0: कोई भी चीज अगर अधिक मात्रा में हो जाए तो वो नुकसानदायक हो जाती है। हालांकि हमारे पास तो अब ऐसे फिल्टर्स आ गए हैं जो धूप को भी काट देते हैं, सारी चीजें कर देते हैं, बाकी सनलाइट को इतना मेंटेन नहीं कर सकता दोपहर में, क्योंकि वो लाइट बहुत हैवी लाइट होती है। इसमें हमारे जो कस्टमर्स भी होते हैं या जो हमारे ब्राइड और ग्रूम होते हैं, तो वो भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि भैया इतनी धूप में कैसे शूट कर पाएंगे हम, इसमें तो हमारा मेकअप भी उतर जाएगा, इसमें तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वो भी नहीं इसमें प्रेफर कर पाते हैं।
1: अनिल जी, इतनी सारी बारीकियां होती हैं, आपसे बात करने पे मालूम चल रहा है कि हमें तो लगता था कि सिर्फ कैमरा होता है, कैमरे का आपने स्विच दबाया, क्लिक किया और फोटो शूट हो गया, लेकिन इतनी सारी बारीकियां, इतने सारे एंगल हैं इसके, तो इसको सीखने के लिए निश्चित रूप से आपने बहुत प्रयास किया होगा और बहुत चरणों से गुजरने के बाद आपने ये पूरी प्रक्रिया सीखी है। कोई एक नवोदित जो फोटोग्राफर है, सीखना चाहता है, वो अगर फोटोग्राफी में कैरियर बनाना चाह रहा है, तो कहां से ट्रेनिंग ले सकता है?
0: पहले कहीं सीखना पड़ेगा, और काम अगर सीखना है उसको, तो वो पैसे की उम्मीद छोड़ दे पहले तो, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि अगर हमें भाई पैसा कमाना है शुरू में, तो काम नहीं सीख पाएगा। और अगर आपके पास पैसे हैं अभी, तो आप कोई भी छोटा कैमरा लेके नेचुरल फ़ोटो खींच सकते हो, कहीं पार्क में जाके फ़ोटो खींच सकते हो, कहीं गार्डन में जाके फ़ोटो खींच सकते हो, आपकी फैमिली में जो भी मतलब आपके कज़न ब्रदर सिस्टर हैं जो अच्छे दिखते हैं थोड़े, उनकी फ़ोटोज़ खींच सकते हो, सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, तो उससे क्या हमें पता चलेगा सोशल मीडिया से कि अच्छी फ़ोटो कैसे होती हैं, मीडियम फ़ोटो कैसी होती हैं और थोड़ी लो फ़ोटो कैसी होती हैं, तो ऐसे फ़ोटो खींचना सीख सकते हैं। और आपको फिर जिस चीज़ में करियर बना हो, जैसे कि वेडिंग में अगर करियर बनाना है, तो आपको जो वेडिंग प्लान करते हैं ना फोटोग्राफर, उनके साथ थोड़ा सा काम सीखना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छे अच्छे हैं जो सिखा देते हैं, इंस्टीट्यूट भी बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्वायरी से बहुत बारीकी से काम सिखाते हैं, और आपके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर चीज़ें हो सकता है कि आपसे आगे चल के खराब हो सकती हैं।
1: क्या वो खूबियां होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को जांच सके कि वो फोटोग्राफर हो सकता है?
0: सर बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर ये हुनर है, हम एक बार ट्राई करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। क्योंकि जब से मैंने ये चीजें अभी थोड़ा अच्छे से करना स्टार्ट किए हैं, तो बहुत लोग ये बोलते हैं भैया प्लीज मुझे ले चलना, बिल्कुल कोई पैसे मत देना भैया, लेकिन प्लीज ले चलना, आप बहुत अच्छी फोटो खींचते हो। तो कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग को लेके भी जाता
1: है। लेकिन आपके अंदर वो क्या चीज थी जिससे आपको लगा कि आप फोटोग्राफर हैं? पेशेंस लेवल हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, सब्जेक्ट की समझ हो गई?
0: जो मुझे

0: ऐसा लगा कि लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं कि अनिल आप बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत प्यार से बात करते हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल लेते हो। तो क्या एक तो किसी से भी बात करो तो बहुत प्यार से बात करो तो वो वहाँ पे ही कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे हमें फोटोज लेनी है, जैसे हमें करना है काम, वैसे आराम से कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं,
1: सामने वालों को आप बेहतर तरीके से समझा सकते हो,
0: समझा सकते हैं, उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से गाइड नहीं करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा नहीं होगा, उसका मूड भी अच्छा नहीं रहेगा और हमारा काम भी खराब हो जाएगा। अगर हम अच्छे से काम करेंगे, प्यार से काम करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा होगा, सामने वाला खुश भी होगा और जो भी हमने उनसे अमाउंट लेना है वो खुशी से देंगे। क्योंकि अक्सर फोटोग्राफी में लोगों की पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी होती हैं एक एक डेढ़ डेढ़ साल तक, और शुरुआत में मेरा भी ऐसे ही हुआ है। पेशेंस रखो, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है,
1: धैर्य बना के रखिए।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा अनिल जी, एक चीज ये बताइए, हमारे आसपास इतनी सारी चीजें पड़ी होती हैं और एक सामान्य व्यक्ति उसको नग्न आंखों से नहीं देख पाता है कि ये चीज की तस्वीर बड़ी खूबसूरत भी आ सकती है
0: जी।
1: लेकिन किसी फोटोग्राफर की नजर उस पर पड़ती है, वो फोटो खींचता है, वो फोटो अच्छी आती है। तो आपके एक्सपीरियंस से आप हमें ये बताइए कि हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, हो सकता है किसी मेले की तस्वीर हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए लोग हो सकते हैं, बारिश की बूंदें हो सकती हैं, पहाड़, झरने, झील, कुछ भी हो सकता है, क्या चीज कैमरे को पसंद है, कैमरा किन चीजों की तस्वीर लेना पसंद करता है जो मनमोहक हो, देखने में सुंदर लगे।
0: देखो, नेचर तो आपको पता है कि प्रकृति की फोटो लेना सबसे ज्यादा पसंद है कैमरे को, क्योंकि जब बारिश का मौसम रहता है, पहाड़ों में से झरने बहते हैं, तो वो अपनी आंखों को कितने सुंदर लगते हैं। तो जब हम उसको कैमरे से कैद करते हैं ना, अगर हम तो वहां से क्लिक कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सामने वाला फोटो देख कर तो बोलता है यार क्या प्यारा व्यू है, यहाँ पे जाना चाहिए, अगर वो उसको देखेगा फोटो में यार वाह कितना सुंदर है, तो वहां पे जरूर जाएगा और वहां पे एक्सपीरियंस करेगा कि यहाँ पे कितनी सुंदर जगह, कितनी प्राकृतिक जगह है।
1: अनिल जी, मान लीजिए कोई बिगिनर फोटोग्राफर है और वो काम के लिए कहीं जाना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो को कैसे मजबूत बनाए, किस तरह के फोटो उसके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि दूसरों को दिखा करके बताए कि ये मेरा काम है, आप मुझे इस काम के आधार पे काम या प्रोजेक्ट दे सकते हैं।
0: अब ये डिपेंड करता है उसको वेडिंग फोटोग्राफी में जाना है, सिनेमा लाइन में जाना है, किस चीज के शूट करने के लिए जाना है। तो अगर वेडिंग लाइन में उसको जाना है तो उसको मेरे अंदाजे से ब्राइड शूट करने चाहिए, फोटो शूट करने चाहिए, नॉर्मल शूट करने चाहिए। आजकल जैसे ट्रेंड चलता है, कॉलेज वाले लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद होता है फोटो शूट कराना, उनकी फोटो शूट करनी चाहिए, क्योंकि अगर अपन सुंदर चीजों की फोटो खींचेंगे ना तो वो और सुंदर लगती है और लोगों को सुंदरता बहुत पसंद है, तो ये बहुत जरूरी है।
1: और एक कैमरामैन के अंदर, एक फोटोग्राफर के अंदर ये हुनर होता है कि वो सुंदर चीजों की सुंदरता को और उभार करके सामने लाए
0: जी।
1: तस्वीर में आखिरी में चलते चलते अनिल जी, हमारे श्रोताओं को जो बिगनर हैं और कैरियर शायद सोच रहे हैं कि फोटोग्राफी में या वीडियोग्राफी में बनाया जाए, वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि व्यावसायिक रूप से प्रोफेशनल लेवल पे कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस समय मौजूद है, क्योंकि ये दौर कैमरे का ही है
0: जी। आजकल सर जैसे आपको तो पता ही है कि कैमरा आजकल हर जगह यूज करते हैं लोग, वेडिंग से लेके अपने पर्सनल यूज तक के लिए लेते हैं। तो सबसे पहले जरूरी ये है, हमें पैसों के पीछे नहीं भागना, अगर हम बिगिनर है तो हमें भागना है क्वालिटी के ऊपर। क्वालिटी के ऊपर काम करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, और अगर अपन क्वांटिटी में जाएंगे तो बिल्कुल आगे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मेरे पास जो पहले कैमरा था ना, अभी तो मेरे पास है दो चार कैमरे, तो जो कैमरा था ना, मैंने लाइट्स के ऊपर अच्छे से काम किया तो फोटोज अच्छी आई, बहुत अच्छी आई, लेकिन जब वो काम मेरा अच्छा हुआ, लोगों को पसंद आया ना, तब मैंने थोड़ा रुक के मैंने एक हैवी कैमरा लिया, और जब मैं उससे फोटोज निकालता हूँ ना तो लोग बोलते हैं अनिल क्या फोटो निकाल रहे हो। फोटोग्राफी के क्षेत्र में या दौर में अगर हमें अगर आगे बढ़ना है तो हम देखो कमर्शियल शूट कर सकते हैं, वेडिंग शूट कर सकते हैं, पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी रील्स बना सकते हैं जो लोगों को पसंद आए,
1: शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी बना सकते हैं,
0: शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं,
1: डॉक्यूमेंट्री
0: शूट कर सकते हैं, हम कोई ब्लॉगिंग टाइप में जैसे अभी करते हैं ना, तो ऐसे हम किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वन विभाग को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसका शूट कर सकते हैं,
1: इवेंट
0: शूट कर सकते हैं,
1: बहुत अपॉर्चुनिटीज है
0: जी।
1: क्योंकि हर कोई दिखना चाहता है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और कैमरा उसका एक बहुत पावरफुल मीडियम है। आपके माध्यम से हमने कैमरे की बारीकी को समझने का प्रयास किया, तस्वीर की बारीकी को समझने का प्रयास किया, और कैसे एक युवा, एक बिगिनर फोटोग्राफर एक दक्ष, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकता है और अपने कैरियर को

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अगला गीत अर्पण फिल्म से। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अनवर की आवाज के कुछ चुनिंदा नगमे में।

अनवर की आवाज में। ये गीत था आनंद बख्शी का लिखा, संगीत आर डी बर्मन का था, फिल्म का नाम था हम हैं लाजवाब।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सोहिनी महिवाल फिल्म का गीत। आवाज़ें अनवर और आशा भोसले की हैं, गीत आनंद बख्शी का, संगीत अनु मलिक का।

सोहेने महिवाल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनवर और आशा भोसले की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे नाना पाटेकर शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। दोस्तों आज है 12 मई, आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। दोस्तों पूरी चिकित्सा व्यवस्था में नर्सेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी, ये तो हम सभी जानते हैं। आज जो हम ये देख रहे हैं नर्सिंग सेवा को एक सुव्यवस्थित रूप में, इसका श्रेय जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 12 मई सन 1820 ईस्वी को फ्लोरेंस नगर में हुआ था। आपने विश्व युद्ध की विभीषिका के दौरान भी दिन रात घायलों की सेवा की और आपको लोग प्रेम और आदर के साथ द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। आपने नर्सिंग सेवा के प्रशिक्षण की नींव भी रखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सभी नर्सेस के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजों में शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म का गाना। वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक, एक ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए रांझना फिल्म का गाना, सुखविंदर सिंह के MMC सूफी एंसेंबल की आवाजें, इरशाद कामिल की बोल और AR रहमान की तर्ज। पिया मिलेंगे।

आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। दोस्तों, प्लांट यानी पौधे ही हमारे पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला फूड चेन की आधारशिला हैं। इनके महत्व और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म का ये गाना।

0: क्या ने?
1: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक डांस नंबर आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, अनमोल मलिक की आवाज, कुमार ने लिखा इसे, जयदेव कुमार ने संगीतबद्ध किया है, आवाज है अनमोल मलिक की, फिल्म का नाम बजाते रहो।

0: ये है विविध भारती।
1: आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हारी भोली।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंत्र, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: जाओ कहीं भी सनम, तुझे इतनी पसंद, हमें याद रखना
1: तेरी दुनिया।
2: आज की फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती बिचारा।
1: आकाशवाणी है प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर शरद बाघेला।

इन दिनों मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। आगरमालवा जिले में भी पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह का सीजन होने के कारण बाजारों में भीषण गर्मी के बावजूद चहल पहल दिखाई दे रही है। दिन के समय बाजारों सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं लोग अपने जरूरी बाजारों के कार्य सुबह शाम करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगरमालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने गत दिनों सर्किट हाउस में आयोजित हुई विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़े सभी कार्यों को अधिकारी प्राथमिकता से पूरा करें। प्रदेश के नगरी विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने आगरमालवा प्रवास के दौरान बड़ोद चौराहे से पाल रोड तक 98.34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामरीकृत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है। अपने प्रवास के दौरान मंत्री द्वय ने जिले के सुसनेर में नगर परिषद के नवीन भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। आगरमालवा जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में रबी फसल विशेष रूप से गेहूं कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि पर अवशेष जलाने पर 2500 रूपए, 2 से 5 एकड़ भूमि पर 5000 रूपए और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15000 रूपए प्रति घटना के दर से राशि वसूली जाएगी। जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को शत प्रतिशत पूर्ण करने वाले प्रगणकों का गत दिनों आगरमालवा SDM कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में SDM व तहसीलदार व जनगणना चार्ज अधिकारी ग्रामीण द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगणकों आशा पालीवाल, किरण नागले, सोना सोनगरा, कालूराम मेहर और प्रेम सिंह यादव को सम्मानित कर उनके कार्य की सराहना की। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में आगरमालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 42 केंद्रों पर की जा रही है, जहां 20,843 कृषकों से 13,617 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही कृषकों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आगरमालवा में 69.42 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन 2 औद्योगिक क्षेत्रों में 394 औद्योगिक प्लॉट विकसित किए गए हैं, जिसमें 175 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होने पर जिले में लगभग 550 करोड़ रुपए के निवेश और 3,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार उपलब्ध होगा और बड़े शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी और साथ ही परिवहन, होटल, खानपान, मरम्मत व अन्य सेवा क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आगरमालवा जिले में 24 करोड़ की लागत से बनने वाले हडाई डैम का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक मधु गहलोत ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले दिनों कृषि विभाग द्वारा आयोजित की गई मिट्टी प्रशिक्षण कार्यशाला में विद्यार्थियों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में विस्तार से समझाते हुए प्रयोग करके दिखाया गया कि किसान अपने कृषि योग्य भूमि की मिट्टी का परीक्षण स्वयं करके उसकी उर्वरकता क्षमता के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अंतर्गत विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझने के लिए राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले की चयनित छात्रा ख्वाहिश गवली ने नागालैंड का भ्रमण कर परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझा और मध्य प्रदेश की संस्कृति का भी परिचय कराया। 8वें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत कुपोषण के कारण पहचान एवं रोकथाम विषय पर आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए जागरूकता व्याख्यान में वक्ताओं ने कुपोषण के प्रमुख कारणों, उसके लक्षणों की पहचान और उससे बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संतुलित आहार, स्वच्छता और जन जागरूकता को कुपोषण से निपटने के प्रमुख उपाय बताए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 10:05 हुए हैं।

प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागनी। राग रागनी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पद्मा तलवलकर का शास्त्रीय गायन। राग जौनपुरी में ये रचना, इसमें तबले पर संगत कर रहे हैं ओमकार गुलवदी, हारमोनियम पर गोविंद पटवर्धन। तो आइए सुनते हैं राग जौनपुरी में पद्मा तलवलकर का शास्त्रीय गायन।

राग रागनी कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे राग जौनपुरी में पद्मा तलवरकर का।

शास्त्रीय गायन। तबले पर संगत कर रहे थे ओमकार कुलवती, हारमोनियम पर थे गोविंद पटवर्धन।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रागनी, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

मोम की गुड़िया। इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गीत की फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई थी आप सभी की। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या और उनका परिवार। अड़ार नांदघाट, छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल। कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी, माई, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान। आपकी पसंद कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई आप सभी की। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। गौरझामर जिला सागर से कुंदन लाल चौरसिया, अंबिका प्रसाद, विवेक कुमार, वीरेंद्र, कार्तिक नैवेद्य और उनका परिवार। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके। आप सभी सुनना चाहते हैं बाबू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरू का लिखा गीत, संगीत राजेश रोशन का।

0: आपकी पसंद कार्यक्रम में आइए, आप सुनते हैं आनंद फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। गीत गुलजार का है, संगीत सलील चौधरी का। इस गीत की फरमाइश व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई आप सभी की। श्रीरामपुर से सुनना चाहते हैं टी अशोक कुम्भार, अविका, जीविका, सानू और अर्चना कुम्भार। पुनावले से अजय सोनवड़े, करिश्मा, अविका, साईशा और उनका परिवार। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूडत, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूडत। झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीता और उनका परिवार। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू। आप सभी की फरमाइश पर आनंद फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में।
1: क्या
2: आपको अभी एक गाना सुनाना पड़ेगा?
1: हा?
2: मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे गाते हैं।
1: आपको कैसे मालूम है?
2: वही ज्योतिष विद्या
1: जो मुख को
3: बड़ा सुर भूल गया होगा।
1: ठीक है, मालूम है।
4: मैंने

आपकी पसंद कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुई आप सभी की। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। टोरवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थामती, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और उनका परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानुप्रकाश और गीतिका खोरवाल। आप सभी सुनना चाहते हैं एतवार फिल्म का गीत भूपिंदर सिंह और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत हसन कमाल का है, संगीत बप्पी लाहिरी का।

आइए अब सुनते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत नीरज का है, संगीत एस टी परमन का। इस गीत की फरमाइश व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका और बेबी अनिष्का, यहीं से तन्मय गजभिये और उनका परिवार, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, अर्णव, आनंद, सत्यम और उनका परिवार, बठिंडा पंजाब से प्रेमजीत जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, तपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू एकम, दमन, अभिजोत और उनका परिवार। इसी गीत के लिए कुछ पत्र मिले हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का पत्र ये इस गीत की फरमाइश के लिए प्राप्त हुआ। ये पत्र मिला एनआर श्रीवात्री, केशर, हेमंत, योगेश, कैलाश, निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश, आयुष और उनके परिवार का। इन्होंने लिखा है लक्ष्मीपुरा सागर से। नेपाल पैलेस सागर से पत्र मिला तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन, शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, रामदास, पंडित रमाकांत दुबे, रमेश कठोंदिया, प्रमोद सैनी और सुजीत का। आप सभी की फरमाइश पर तेरे मेरे सपने इस फिल्म का ये गाना।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में नीरज का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत एस डी बर्मन का था। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी, इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
2: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
2: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
2: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
2: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
2: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
2: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
2: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
3: आग बरसाती धूप।
4: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
5: क्यों?
4: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
5: अच्छा, तुमने खुद देखे?
4: हाँ।
5: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
5: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से, चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
3: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
3: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
5: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
5: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
5: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
5: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
5: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
5: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
5: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
5: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
5: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
5: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
5: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
5: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी,
1: और अगर लू लग जाए तो
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
5: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी।
5: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
5: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
5: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
6: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक में खेले भरपूर।
5: आग बरसाती धूप।
7: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
8: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
1: इन्हें हमारा सलाम।
0: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
2: साथियों नमस्कार।
0: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
2: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
0: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
2: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
0: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
2: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
0: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
2: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए।

0: उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।

नुमाइश एल्बम से पंकज उधास की आवाज़ में आपने सुनी ये गज़ल। चलिए बढ़ा जाए अब शांतनु मोइत्रा के संगीत की ओर। प्रसून जोशी के बोल हैं, शुभा मुद्गल की आवाज़, क्या कहता है मन के मंजीरे फिल्म का एल्बम से ये गाना, आइए सुनते हैं।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है।

फैज अनवर ने इस गाने को इस गाने को लिखा था सोनू निगम की आवाज जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाजों की ओर।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: चलिए बढ़ते हैं अब रंग तरंग कार्यक्रम में अगली रचना की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मन्ना डे और साथियों का स्वर। जी हाँ, फिल्म का नाम तीसरी कसम।

0: बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या,
0: रामा उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी

वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। अनजान ने इस गाने को लिखा था, बप्पी लहरी का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ की ओर।

0: विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
1: अरे

सीता और गीता फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतज़ार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतज़ार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज़ में, शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज का ये कार्यक्रम सचा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज़ है अगले गाने में, उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम दो दुनी चार।

तो साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द चुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज का टेक्स्ट आप तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ।

आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर ज़माना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है। तो भाई ये तो था आज का टेक्स्ट और इसी में से कुछ शब्द हैं, और वैसे शब्द तो आपने ढूंढ ही लिए हैं और गानों के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की पंक्तियां जीवन के अनवरत संघर्ष, प्रेम और आशा के बीच संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। तारों की टिमटिमाहट में छिपी मोहब्बत और चांद की शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है। और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को थका देती है, लेकिन सूरज की हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती। आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छाँव में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम रात आसमान, ख्वाब, उम्मीद, चांद, टिमटिमाते तारे और सूरज। तो वैसे मैंने कहा ना कि शब्दों के बहुत करीब पहुँच चुके हैं आप लोग।

कुछ और कमेंट हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बड़े ही सुकून से लिखा है आपने ये कमेंट। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वक्त की बहती नदी में जब यादों के दीप जलते हैं तो तन्हाई की खामोशी भी एक सुरीली नज्म सी लगने लगती है। सर्द रातों में ओस की बूंदें जैसे ज़मीन के कानों में सुकून के किस्से सुनाती हैं और ढलता हुआ सूरज जाते जाते ये वादा कर जाता है कि हर ढलती शाम एक नई शुरुआत की दहलीज होती है। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने। आगे लिखा है कि इंसान अक्सर मंजिलों के शोर में रास्तों की खूबसूरती भूल जाता है और दुनिया की बंदिशों में अपने अरमानों को कैद कर लेता है, मगर हकीकत तो यही है कि जिस दिल में हौसलों की चमक और प्यार की गर्माहट होती है वो मुश्किलों की पथरीली जमीन को चीर कर भी अपनी खुशियों का गुलशन खिला ही लेता है। बहुत खूब। सच में साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दिल अगर सच्चा हो तो मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। तो भाई अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए, यादों को मुस्कुरा के महसूस कीजिए और अगर कोई अपना दूर है तो चांद को देखकर उसे याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों कुछ रिश्ते आवाज़ों से नहीं एहसासों से ज़िंदा रहते हैं। एक और कमेंट हमारे पास आया है कि सूरज और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं हैं, ये प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहीं ये जीवन की ऊर्जा, भावनाओं, समय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। सूर्य को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है जो आत्मविश्वास और यश प्रदान करता है, वहीं चंद्रमा को मन की शीतलता और शांति का और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो भाई जब मोहब्बत सच बात है कि मोहब्बत न होती, प्यार मोहब्बत न होती, प्रेम न होता तो कुछ भी न होता। चांद, तारे, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, साथियों ये झरने, नदियाँ कुदरत की सौगातें हैं, हमारे भीतर जीने की उम्मीद जगाती हैं। ये सच में हमें मोहब्बत है इनसे, अगर ये न होते तो ये जहाँ ही न होता। चलिए अब बात चल रही है प्यार मोहब्बत की, तो मोहब्बत का जिक्र करता एक गाना सुनते हैं और देखते हैं कि किस किस की पसंद मिलती है हमसे। वैसे अभी तक इस गाने का जिक्र मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया आपके इस कमेंट्स में।

आशा जी के गए इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर न आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है। रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं। सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है। सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है, तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ, सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में संवारे हूँ मैं, और शामे दिल की कसम आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुँच चुके हैं। शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया लेकिन गानों के बहुत करीब हैं। एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के धीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो। ढलती शाम अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और ज़माना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है। कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम रात और चांद की बात होगी तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास जरूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों। एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास। लिखते हैं, इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं, टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है, शाम की रोमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है, टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है, सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है। ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत है। संगीत में सफ़र का इंतज़ार रहेगा। तो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है।

साथियों बताइएगा जरा कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो वो ख्वाहिश क्या होगी, जरा बताइए। तो जब जिक्र आसमान का चला है तो हम भी जरा देखें कि कौन है वो फरिश्ता जो हमें प्यार का सबक सिखाने के लिए ऊपर से आया है।

मोहम्मद रफी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है, वाह भाई वाह, एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत, हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है, शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हाँ, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस ज़िंदगी में, तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में, आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है, आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजय सा लगता है, लगता है यज्ञ सफल हुआ, लंबे इंतजार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफ़ी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहाँ मिलता है जहाँ हरियाली, पानी, नदियों की कलकल, झरनों का कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट हो, और इसी को बचा कर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ, और वो साथी जो अब तक शब्द

दो का चुनाव नहीं कर पाए हैं, उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर ज़माना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है, और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा, जो भी फैसला हो अच्छा या बुरा, हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है। एक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है, उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम, आप आए बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुँच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफ़र में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है, ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है, जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोली पिंड नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेश वाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात, बहुत बहुत बधाई आपको।

एक कमेंट में लिखा है कि वही सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचे, तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों, हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पयाम लाती है। आप बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम, उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज़ अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। ज़रा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जान

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सब ने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नज़र आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफ़ी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा, ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फ़ोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है। सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती थी, लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा कि हमने पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो वही अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी, शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया, क्या लिखा है इन्होंने, जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है, मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आँखों में गर्व की चमक को देख कर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है, माता पिता के लिए गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फहरिस्त पेश करता हूँ। यह आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की ज़िंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना। इसे ही स्वीकार कहते हैं जो मन की शांति, संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है।

कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद्र तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद्र तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती सुरीली धड़कन शायराना तान आप सभी को नमस्कार, और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफ़र में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है, और दोपहर के चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का, जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई, खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर

बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है, घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है। ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है। ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है। ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों, जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है, तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है। आपकी बातें, आपके अनुभव, वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है, बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है। इसके गीतकार और संगीतकार कौन है, सुनिए ज़रा।

स्व कर दिया और उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ हैं। बिल्कुल बहुत सही बात आप लिख रहे हैं, तो वहीं भी देती शायद इसी का नाम उम्मीद है। आप क्या कहते हैं ज़रा बताइए। और बात चली है चांद की तो ये गाना हो जाए, और बताइए कि क्या ये गाना आपकी लिस्ट में था।

एक साथी ने बहुत ही भावुक सा कमेंट भेजा है कि अगर एक तारा टूटकर आए तो पूछूं मेरी माँ ऊपर कैसी है। आपने भावुक कर दिया सचमुच।

ये बड़ा ही स्वीट सा गाना देवता फिल्म से सुना आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। हमारे एक साथी ने लिखा है गुरुदेव और लता जी का सुपर गीत संगीत राहुल देव, शायद इन्होंने गुरुदेव किशोर कुमार जी को लिखा है। और एक साथी लिखते हैं कि गुलजार जी ने चांद से इतनी मोहब्बत की है कि जैसे लगता है चांद और वो एक ही हैं, एक में समा गए हैं। वो कहते हैं चांद का मेरे पास कॉपीराइट है। एक साथी ने अपनी शाम यादगार शाम साझा की है कि मेरी सबसे खुशनुमा और यादगार शाम 27 मई साल 16 की है, 2016 की शादी की 25वीं सालगिरह को मेरी दोनों बिटियों ने यादगार बनाया था। बेहतरीन उपहार और हम चारों ने रात का भोजन एक साथ किया था। इन मधुर स्मृतियों को हमेशा अपने साथ सजाए रखिएगा। तो वहीं दूसरे साथी ने भी कुछ शेयर की हैं बातें। लिखते हैं मुझे बहुत सुहाती है, सुहाती वो शाम है जब छिटकती चांदनी से धुलती शाम है, संग फजा में रात रानी की महक हो, इसी बहाने मेरे चेहरे पर थोड़ी सी तो इत्मीनान की चमक हो।

की पोस्ट टिमटिमाते तारे और ठंडी रोशनी के बीच यानी रात को ही पढ़ने को मिल गई, लेकिन अभी दोपहर में कड़ी धूप के बीच जब ठंडी हवा और शीतल चांदनी से जुड़ी बातें और उनसे जुड़े गीतों की बरसात होगी तो इस गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और अब वो मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबके लिए पहुंच रहा है, सुनिए ये गाना और बताइए ज़रा कि इसके संगीतकार कौन है और इसमें नायक कौन है। आप में से अधिकांश साथियों की लिस्ट में ये गाना

एक साथी ने लिखा है, कुछ महीने पूर्व मैंने रात को ग्रहण के समय रेड मून का खूब लुत्फ लिया था। सुना था कि 144 साल बाद अब ये नज़ारा देखने को मिलेगा। रात 12 से सुबह 1:30 तक बस चांद की हरकतों पर नज़र रखी थी। मैंने ये पल सबसे यादगार है मेरे लिए।

0: प्यार हुई।
1: हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर। क्या समाप्त हो ही गया, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

संगीत आरंभ कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए कैफी आजमी के लिखे गीत से। संगीत मदन मोहन का है और फिल्म है हकीकत।

मुखड़े से जुल्फ जरा सर कंगा, मुखड़े से जुल्फ जरा सर कंगा, सुलझेगा प्यार उलझ मैं जाऊंगा, पाके दिहाई बहुत बच

और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रवि ने, फिल्म है गुमराह।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। नर्सिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले इन पेशेवरों को प्रमाण पत्र पदक और 1,00,000 रूपये नकद दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हुई पहली कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना की है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने और बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। उनके साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें भाजपा असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता शामिल हैं। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया है, क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी और एनटीए सभी दस्तावेज उन्हें सौंपेगी। करीब 23,00,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी, हालांकि उन्हें फिर से आवेदन या फीस नहीं भरनी होगी। परीक्षा की नई तारीख जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: 21 जून योग दिवस को लेकर के जो यूनेस्को के माध्यम से पूरी दुनिया को योग अपनाओ, निरोगी बनो, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, शरीर में परमात्मा की दया से योग के माध्यम से अपार क्षमता है जिसको हम जागृत कर सकते हैं।
0: मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल के मिंटो हॉल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आईपीएल में कल रात धर्मशाला में खेले गए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से मात दी। वहीं आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। प्रदेश भर के करीब 88,000 अधिवक्ता 122 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आंधी बारिश के बाद प्रदेश में एक बार फिर लू ने दस्तक दे दी है। कल रतलाम में तापमान रिकॉर्ड 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज उज्जैन, धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में लू का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज लॉयंस क्लब के भोजन सेवा केंद्र भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। राजगढ़ के पचोर पेट्रोल पंप अग्निकांड के घायलों से मंत्री गौतम टेटवाल ने आज शाजापुर अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर आगरमालवा में व्याख्यान का आयोजन किया गया। नवागत संभागायुक्त ने नर्मदापुरम संभाग का पदभार संभालते ही कमिश्नर कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। जबलपुर के रामसागर तालाब में डूबे 2 युवकों में से एक का शव आज सुबह बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লও যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्रीपद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित

0: रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश

0: प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ER News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेलेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिश्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

0: नजर को दिल,
1: किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूँ फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई, दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

0: आशिकन।
1: मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है। इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का। शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए विविध भारती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।

0: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का
0: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ,
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया, जैसे तुमने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती है, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। और खास तौर पर एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन

0: ये बन जाए और हम बाहर जाएं। लेकिन ये बात भी है, कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, हाँ। कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें हाँ। ये सब चीजें चलती हैं। और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे। आजकल क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है। लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो एक हफ्ता 10 दिन का समय निकल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां, हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं, उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकती हैं।
0: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं,
1: हाँ।
0: क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए तो घर में शांति है। सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
1: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं। और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं।
0: यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
1: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
0: जी। और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
1: जी,
0: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में
1: जी।
0: कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
1: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही हैं। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए, तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में
0: जी,
1: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
0: जी
1: है।
0: आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
1: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
0: चलो चलते हैं।

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है और जो उसका लाल रंग के जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना,
1: और लेट जाए बस, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी हैं, वो बहुत नाजुक होता है
0: जी।
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की ज़रूरत होती है।
0: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों या आपके बागीचे में लगे हों या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ पे आप लगा सकते हों, तो ज़रूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
1: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वहाँ हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहाँ वहाँ जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
0: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रास्ते की निशानी बन जाता है। भाई तुम आगे वो रास्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना है ना, कई बार ऐसा होता है।

0: ये निशानियाँ बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके, और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियाँ घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती
1: हैं। बिल्कुल, मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा उसके दिल पर क्या बीतती है, और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
0: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है
1: जी,
0: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं,
1: सही कहा,
0: ताज़ा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्या है इनसे काफ़ी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बारे में और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती हैं। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज़ बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज़ दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टियां लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकलें। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और

0: जूस पीते रहे। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जिसे मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके। तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं। तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है, और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुँची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस

0: को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
1: भाई नर्सों का महत्व ये ख़ास तौर पर वो ज़रूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
0: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
1: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है, और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा माहेश्वरी
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डीजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज़ का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
3: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजें, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी हैं, वो हैं विनीता सिंह, और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक के संस्थापक हैं।

0: उनके सीईओ हैं और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
1: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये मतलब ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
0: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
1: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
0: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
1: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
0: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफ़ी किफ़ायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेज़ी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
1: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
0: हाँ,
1: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
0: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
0: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई। और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रहे, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे।
1: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
0: जी,

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की 1 लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। 100 सुनार की 1 लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की 1 लोहार की यह लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का 1 लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके 1 सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं, और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे, और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको

0: धराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी, इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं, और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ ज़रूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, हाँ। जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, हाँ। और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है, तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में ना वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किससे कहानियाँ सुनाना बड़े मज़े से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियाँ नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें, और वो कहानियाँ उनकी चार चार दिन, पाँच पाँच दिन ख़त्म ही नहीं होती थी। हम इंतज़ार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएँ किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में काम करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों के जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ,

0: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो बड़े वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
1: और
0: बड़ा
1: इसी
0: हो रहा
1: तरह
0: है।
1: से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, और बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
0: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात,

0: आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
0: हाँ, और उसके बोल है मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार

0: घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
1: पिटाई नहीं हुई थी?
0: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है। लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
1: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
0: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
1: जी।
0: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा
1: जी,
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी,
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी हैं सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
1: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: लिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
2: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे

0: एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें। मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं तो सवेरे लेट उठते हैं तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है।
0: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर।
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनाया सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे।
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
1: लेकिन
0: लो।
1: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी।
0: जी छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत पुरानी गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा।
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे।
0: जी जी, जी।

0: मिला।
1: आप पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
2: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
1: जी,
2: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
1: उन्होंने मेरे अनंत जोक कर रहे हैं
2: जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
1: उसी रोल के लिए
2: नहीं,
1: हाँ।
2: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर,
1: वाह,
2: हाँ। विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए, लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज़ बज रही थी, आँखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक

0: एक फोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
1: जी,
0: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने,
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे। अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरा प्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो

0: मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप। ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था। अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे, आइए आइए बैठिए। लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है, वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बार जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया, तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था। और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया, जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था। और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया। और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है, और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे हैं, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था।
1: भूल भी गए?
0: भूल भी गया, क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
0: जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया, क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुए, मैं कुछ काम के लिए गांव गया, और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उसने उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वही रह गया,
1: प्रीमियर में नहीं गया,
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी, और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: उस फिल्म में बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी।

0: श्रीदेवी थी और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
1: जी।
0: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
1: जी।
0: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
1: जी।
0: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
1: जी।
0: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
1: जी।
0: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
1: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
0: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती हैं लेकिन हमें तालियां मिलती हैं।
1: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
0: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
1: जी,
0: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
1: महारानी
0: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
1: जी।
0: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूँगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़ी है। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
1: जी।
0: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उस

0: और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते हो क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक जमाने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार है, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत, देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग, हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह, लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता हूँ।
1: वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने जी। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था, मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ।

0: फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है, तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे। और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की मायाई हो गई जैसे।
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी।
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी।
1: ये
0: जी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 के अवसर पर सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल लिसाम्मा पीवी ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को बधाई दी। मेजर लिसाम्मा ने अथक परिश्रम करते हुए निरंतर सेवा करने और अत्यंत करुणा और सहानुभूति के साथ रोगियों की देखभाल करने के लिए उनकी सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्वाचन के लिए आज पूरे प्रदेश में एक साथ मतदान हो रहा है। भोपाल में जिला न्यायालय परिसर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में लू का असर रहेगा और भोपाल, इंदौर समेत 49 जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री के बीच बना रहेगा। और IPL मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

मुश्किल आसान हो जाती है जब इरादों में जान होती है। वक्त चाहे कितना भी सख्त हो, हौसला अगर पक्का हो तो रास्ता भी अपना बनता है, क्योंकि जो अपनी सोच बदल देता है वो अपनी दुनिया बदल देता है। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्या आचार्य। दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, आशा करते हैं कि आप इस भीषण गर्मी में अपना ध्यान रख रहे होंगे। पानी पीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि धूप में बाहर ना जाएं, भीषण गर्मी से बचें और अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के बारे में। चर्चा करेंगे नई दिशा, वैश्विक आतंकवाद की स्थिति, नक्सलवाद में गिरावट और विकास की नई राह पर, और साथ ही साथ हरित आदतें कैसे हम युवाओं की नई पहचान बन रही हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का पहला गीत धुरंधर से।

दोस्तों धुरंधर से अभी आपने ये गीत सुना, संगीतकार शाश्वत सचदेव और रोशन और गीतकार इरशाद कामिल और साहिल लुधियानवी। आप सभी सुन रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सान्याचार्य। दोस्तों पौधे पृथ्वी पर जीवन का आधार है। हम जो हवा लेते हैं उसका 80% ऑक्सीजन पौधों से आता है और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का 90% हिस्सा वनस्पतियों पर निर्भर करता है। पौधों के इसी महत्व को समझते हुए और उनके स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल आज ही के दिन यानी कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि पौधों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता से जुड़ा है। बात करें चुनौतियों की तो जलवायु परिवर्तन, बीमारियां, जैव विविधता में बदलाव से ये सब चुनौतियां हम सभी देख रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, इसीलिए आज के दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है और इस साल की थीम है पादप स्वास्थ्य, सुरक्षित व्यापार और डिजिटल नवाचार, प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल इनोवेशन। एक छोटी सी कविता से इस थीम को और बेहतर समझा जा सकता है। जल सुरक्षित तो जग सुरक्षित, हवा की खुशबू मिट्टी का मान, पौधों में बसती है सबकी जान, पर आज खामोश खड़ी है हरियाली, बीमारियों ने चुराई है इसकी लाली, जो बीच सरहद पार से आते हैं संग अपने अनचाहे दुश्मन लाते हैं, सुरक्षित व्यापार का अब संकल्प ले हम, फसलों की आंखों की आंखों में ना हो नम, अब हाथ थामेंगे नवाचार और विज्ञान का, रास्ता खुलेगा तरक्की और मुस्कान का, डिजिटल नजर से सब फसलें पहचानी जाएंगी, बीमारी आने से पहले ही हार मान जाएगी, सिर्फ एक दिन नहीं ये हर पल का है वादा, पेड़ लगाएंगे हम जरूरत से भी ज्यादा, पेड़ लगाएंगे हम जरूरत से भी ज्यादा। दोस्तों 2026 का ये पैगाम याद रखना है कि पादप स्वास्थ्य रहेगा तो ही हम अपना जीवन सफल बनाएंगे। पौधे बोल नहीं सकते लेकिन उनकी खामोशी में ही हमारा भविष्य छिपा है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक वादा है कि हम अपनी धरती को हरा भरा रखेंगे, क्योंकि अगर जड़ सुरक्षित तो जग सुरक्षित। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का अगला गीत केदारनाथ से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में।

आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका शीर्षक है नई दिशा, वैश्विक आतंकवाद की स्थिति, नक्सलवाद में गिरावट और विकास की नई राह, और उन प्रयासों की जो हमारे आदिवासी और दूर दराज क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। भारत में सकारात्मक बदलाव, नक्सलवाद में गिरावट। अब अगर हम भारत की ओर देखें तो एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एक समय था जब नक्सलवाद देश के कई हिस्सों में गंभीर चुनौती बना हुआ था। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे वर्षों की रणनीति, सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और सरकार की विकास उन्मुख नीतियां हैं। आत्मसमर्पण हिंसा से विश्वास की ओर। दोस्तों, इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसमर्पण। हजारों नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। सरकार ने उन्हें पुनर्वास, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर दिया है। ये दर्शाता है कि जब अवसर और विश्वास मिलता है तो बदलाव संभव है। विकास की नई किरण। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तेजी से विकास हो रहा है। नई सड़कों और पुलों का निर्माण हो रहा है, जिससे गांव शहर की दूरी कम हो रही है। स्कूल और अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर लगातार सुधर रहा है। पुनर्वास और सशक्तिकरण का एक नई शुरुआत। सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत पूर्व नक्सलियों को घर और जमीन दी जा रही है, उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल उनका जीवन बदल रहा है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक माहौल बन रहा है। आम नागरिक की भूमिका। साथियों, किसी भी समाज में स्थायी शांति केवल सरकार या सुरक्षा बलों के प्रयासों से नहीं आती, उसमें आम नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें चाहिए कि हम अफवाहों से दूर रहें, अपने आसपास जागरूकता फैलाएं, युवाओं को शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से की ओर प्रेरित करें। आज की चर्चा ये स्पष्ट है कि जहां एक और दुनिया के कुछ हिस्सों में आतंकवाद अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, वहीं भारत में नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा रहा है। ये बदलाव हमें उम्मीद देता है कि सही दिशा, मजबूत इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयासों से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और विकसित समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्य से।

दोस्तों, शंकर महादेवन की आवाज में भी आपने गीत सुना लक्ष्य से। और अब हम बात करने वाले हैं हरित आदतें। जब युवा इन आदतों को अपनाते हैं तो वे समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरते हैं। आज की युवा पीढ़ी यह समझती है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ेगा, इसीलिए वो सिर्फ ये सारी चीजें पढ़ते नहीं हैं बल्कि अपने जीवन में उपयोग भी करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करना, सुरक्षित भोजन, प्राकृतिक खेती और आहार का, ये सब युवा ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं ने अपनी कूल दिखने की परिभाषा को बदल दिया है। प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ, स्टील स्ट्रॉ का उपयोग करते हैं। कपड़े के बने बैग्स का यूज करना, शहर में मिट्टी के घरों को बढ़ावा देना, ये सब युवा सोशल मीडिया से देखते हैं। और आजकल सस्टेनेबल लिविंग एक ट्रेंड भी बन चुका है, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये डिजिटल क्रांति हरित आदतों को घर घर तक पहुंचा रही है। हरित आदतें युवाओं की एक ऐसी नई पहचान है जो ये दर्शाती है कि वे आने वाली पीढ़ी के प्रति कितने गंभीर हैं। जब एक युवा हाथ में कपड़े का बैग लेकर निकलता है या पौधारोपण की पहल करता है तो वह केवल पर्यावरण नहीं बचा रहा होता बल्कि एक नए समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की नींव रख रहा होता है। छोटे बदलाव ही आगे जाके एक बड़े बदलाव लेकर आएंगे। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करेंगी। अब वक्त हो चला है महत्वपूर्ण रोजगार सूचना का। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। पद की संख्या है 11,127। आवेदन देने की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। अधिक जानकारी आप rrbapply.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर भी। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म डिशम से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं श्रोताओं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में पहला गैर फिल्मी गीत सुनिए, मकबूल अहमद साबरी की आवाज में, शब्द रचना अहमद फराज की है, संगीत मकबूल अहमद साबरी का है।

0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए नीलम साहनी की आवाज में ही गजल, शब्द रचना शायर जानिसार अख्तर की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए गुलफाम एल्बम से हरिहरन की आवाज में गीत। मुनव्वर राणा ने इस गैर फिल्मी गीत को लिखा है और संगीत है जॉली मुखर्जी का।

साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगला गीत विशाल मिश्रा, श्रेया घोषाल, नोरा फतेही, विद्युत जमाल और अर्जुन रामपाल के स्वर में। दिल झूम फिल्म का नाम है। गीत

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद अजीज और साधना सरगम के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा गीत। तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है त्रिदेव।

0: पुष्पा टू द रूल। अब सुनिए इस फिल्म में श्रेया घोषाल को, गीतकार रकीब आलम, संगीतकार देवी श्री प्रसाद।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टोक

0: रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए समीर का लिखा गीत। आवाजें अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की, फिल्म का नाम बागी।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए धड़क 2 फिल्म का गीत, आवाजें श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की, बोल रश्मि विराग के संगीत जावेद मोहसिन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार गीत। कार्यक्रम में सुनिए पहला गीत, फिल्म का नाम 20 साल बाद। हेमंत कुमार की आवाज़ में ये गीत है, संगीत भी हेमंत कुमार का है, शब्द रचना शकील बदायूनी की है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में गीत। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है, फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक और गीत हम शामिल कर रहे हैं। श्रोताओं, इसके पहले आपको बता दें, ये जो गीत अभी आपने सुना वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, एस टी बर्मन के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। और अब जो गीत सुनवाने जा रहे हैं वो है महेंद्र कपूर की आवाज़ में, साहिर का लिखा हुआ, रवि द्वारा संगीतबद्ध, फिल्म का नाम हमराज।
1: दिल का

शाम के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग।

0: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
1: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
0: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
1: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स दुकान नंबर 4, लिंक रोड, सागर।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए राजू पटेल और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।
8: अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत चित से टरे नटारी। अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत

0: बुंदेली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को है, बस कुछ ही पलों का इंतजार कीजिए और आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और

0: क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपको जानकारी दे रहे हैं पहले आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर के बाद यानी 7:10 से सुनिएगा भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 7:20 से सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। 8:00 से कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत फिल्मी गीत संगीत और रात 8:15 पर कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत

0: गैर फिल्मी गीत और संगीत। रात 8:30 से सुनिएगा काव्य पाठ, रचनाकार शैलेंद्र जड़िया। 8:45 से दिल्ली केंद्र से सुनिएगा समाचार संध्या। रात 9:00 से समय होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। रात 9:30 से सुनिएगा मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। रात 11:00 से दिल्ली केंद्र से सुनिएगा हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार। आज की प्रसारण सभा का समापन हम रात 11:10 पर करेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अब आपको जानकारी दे रहे हैं कल यानी 13 मई 2026 दिन बुधवार के कार्यक्रमों की। कल की प्रसारण सभा की शुरुआत हम करेंगे प्रातः 5:53 पर। छह बजे से आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 6:05 से कार्यक्रम अर्चना के अंतर्गत भक्ति संगीत आप सुन सकेंगे। 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। 6:40 से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कल सुबह 6:55 से दिल्ली केंद्र से सुनिएगा संस्कृत में समाचार। 7:00 से कार्यक्रम सुबह सुबह। 7:05 से कृषि संकेत। 7:10 से भोपाल केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण। 7:20 से कार्यक्रम मन चाहे गीत और 7:45 से कार्यक्रम संगीत सरिता। कल सुबह 8:00 से दिल्ली केंद्र से सुनिएगा समाचार प्रभात। 8:15 से कार्यक्रम लोक संगीत। 8:45 से कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कल सुबह 9:00 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और 10:00 से भोपाल केंद्र से सुन सकेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। कल सुबह 10:05 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। 10:10 से फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का पुनः प्रसारण और 11:00 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कल सुबह 11:30 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।
1: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से।
4: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे शुरुआत। ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर होगी चर्चा। लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कल होगी जारी। 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे 1,835 करोड़ से ज्यादा रुपए। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होगी। इस यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया।
1: पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात का होगा और इस दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है। यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है कैसे मजबूत किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक मुख्य आधार है।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। बैठक में शामिल विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को न नया आवेदन करना होगा और न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया,
2: इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। जो शिकायत आई थी उसमें अगर एक इंच की भी, एक आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी। उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे।
0: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचा

आना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साइबर अपराधों और बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत संदिग्ध लोगों का डेटा एआई सिस्टम को दिया जाएगा, जो उन बैंक खातों को पकड़ेगा जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम इधर उधर करने के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला प्रकरण की अंतिम सुनवाई आज पूरी हो गई। करीब दो घंटे की बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की 98 दिनों की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैज्ञानिक रूप से अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि यह स्थल मंदिर है या मस्जिद। वहीं हिंदू पक्ष ने सर्वे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला को वाग्देवी मंदिर बताते हुए पूर्ण अधिकार की मांग की है। इस साल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 365 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो देश के कुल उत्पादन का 18% है। भारत से होने वाले कुल गेहूं निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी 35-40% है और शरबती व ड्यूरम गेहूं की मांग अमेरिका, जर्मनी, इटली और दुबई जैसे देशों में बनी हुई है। प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति डीडी बंसल आज अपने सरकारी आवास से 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर अदालत पहुंचे। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सभी को साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए। देवास जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मोरूखेड़ी ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 350 कंटूर ट्रेंच बनाई गई हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे हर साल करीब 13 लाख लीटर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी एआई की पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के 11-11 मैच में 14-14 पॉइंट्स हैं। आज जीतने वाली टीम सीधे पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना, झाबुआ और बैतूल में जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं से के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आगरमालवा में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण कार्य में नलखेड़ा ग्रामीण के सर्किल 20 ने तय समय से पहले 100% काम पूरा किया। खंडवा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अधिकारियों को ईंधन बचाने के लिए काफिले में केवल जरूरी वाहन रखने के निर्देश दिए। देवास में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी। जिले को 196 सीटों का कोटा मिला है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में जन्मी माता चीता के चारों शावक मृत पाए गए। सुबह मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट के पास शव मिले। शहडोल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर, माफ कीजिए, सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है खेती गृहस्थी पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को शशि और
1: सुनील राय दो जनों की दो यहाँ जोड़े की राम राम, राम। शशि बहन आपके लाने भी हमारी दो यहाँ जोड़े की राम राम पहुँच जाए।
0: बिल्कुल भैया, देखो अपने श्रोता भैया हरे तो अपने हाथ नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ हाथ जोड़े हैं, मगर हम आपके हाथ देख रहे हैं और आप भी हमारे हाथ देख लो, हम भी हाथ जोड़ के राम राम।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहन, राम राम। और बहन सभी किसान भैयाओं को बहुत ही बहुत स्वागत है। आप तो झट्टे जा बताओ कि किसान वाणी में आज अपन काका लेके आए हैं।
0: बिल्कुल भैया, तो देखो अपने किसान भैया रहे जानते ही हैं कि देखो अपन जो भी मौसम चलत है खेती बाड़ी से संबंधित होते हैं, सो वो विषय पे अपन थोड़ी सी चर्चा करा ही लेते। इसके अलावा भैया जो भी दिन दिवस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भी रहे थे उनके बारे में भी अपन अपने किसान भैया बहनों को बताते हैं। भैया इन दिन दिवस के बारे में बताओ, उद्देश्य यही रहते हैं कि अपने किसान भैया हरे भी हर चीज के बारे में जानकारी रखें और हर बात के बारे में जागरूक रहें।
1: बिल्कुल,
0: है ना भैया?
1: बिल्कुल।
0: और इसके अलावा देखो लोकगीत भी बढ़िया से सुनवाते ही है, कछु ऐसी जानकारियां विशेष जानकारियां ले आते हैं जो अपने जो विशेषज्ञ रहते हैं उनके द्वारा अपने किसान भैयाओं को दिलवाई जाती हैं, जिसे वे भी खूब आगे बढ़े और खूब जागरूक रहे।
1: बिल्कुल बहन।
0: और भैया जैसे कि मंडी मौसम की जानकारी तो देते ही है, सुबह भी दे हैं। और भैया अब बताओ का कहो चाहते हो आप?
1: आज की एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहानी बहन, भेंट वार्ता जो उनका है, ई विकास पोर्टल से रासायनिक खाद उर्वरक कैसे प्राप्त करें। जा किसान भैया ने अबे परेशान है, इतने होते दुकान पे पूछ रहे हैं और मंडी में जाके पूछ रहे भैया खाद कहाँ मिले, कौन सो खाद धरे हूँ, तो जा सब जानकारी बड़ी बारीकी से आज की जो भेंट वार्ता सुने हमारे किसान भैया रहे, तो उनको समझ में आ जाए कि अपन को घर बैठे रजिस्ट्रेशन कैसे करने मोबाइल के माध्यम से, और अपन को रासायनिक खाद कहाँ मिल है कैसे मिल है बारीकी से सुनने का ही, परेशान बिल्कुल नहीं होने और ना हमारे पैसा भी नहीं देने पड़े। जब बिल्कुल न बने बात कोनो भी क्योस्क सेंटर वाले के पास चले गए अपन, तो उतने भी अपन करवा सकते हैं। मनो भेंट वार्ता अगर सुन ली तो पैसा अपन खुद बचा सकते हैं, कौन सो खाद कितनो जान है जा पूरी जानकारी का ही बहन।
0: और भैया जैसे कि आपने कही बिल्कुल बारीकी से सुनने हैं, सो हम तो यही कह रहे हैं अपने किसान भैयाओं से जो कछु काम वाम कर रहे हो सुबह यहाँ ता धोके आ जाओ रेडियो के नगर
1: हैं,
0: और अच्छे से बैठ जाओ कि बिल्कुल से ऐसी जानकारी मिल रहे हैं कि हमारे सुनील भैया कह रहे हैं कि इतने नहीं फिरने आए और अब इतने तो फिर रहे हो सुनने बिल्कुल नजदीक ही आओ ना रेडियो के, और थोड़ी यदि आवाज की मद्दी सी होवे सो तेज कर लो, मोड़ा मोड़ी चिल्ला रहे हो सोने सुई शांत कर लो।
1: बिल्कुल सही कह रहे
0: हैं। तो और भैया अब बताओ और क्या कह रहे हैं?
1: अब हम जा कह रहे थे बहन के आज दिन दिवस की बात कहा, तो दिन दिवस में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कहा 12 मई को।
0: बिल्कुल भैया, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाओ जाते हैं। और भैया ये साल की थीम कहानी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं जथीम रखी गई है। जोन स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके सशक्तिकरण पर केंद्रित है।
1: बिल्कुल बहन, देखो डॉक्टर साहब ने दवाइयां लिख दी, इंजेक्शन की बात हो गई, अगर ओखों बारीकी से लागू नहीं करोगा, दिन रात उतर रहे थे भर्ती रहे थे मरीज, तो मरीजों की बारीकी से अगर देखरेख करने हैं तो ये बात बहुत जरूरी कहानी बहन के अपन को कोनो प्रकार की भी दिक्कत उनको नहीं हो पाए और समय पे हो जाए, जैसे कोनो भी दवाई देने हो की मात्रा, तो नर्सिंग जो अंतरराष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कहा तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहाई और उनके लाने बधाई की पात्र भी हैं जो सशक्ति से अपना काम कर रही।

0: और बहन अब बात आ जाते अपन जो चर्चा कर रहे, अब बोनी को टेम मारो, खाद की आदान व्यवस्था और बीज की आदान व्यवस्था। तो खाद के लाने तो हमने चर्चा कराई दी है, अपन हम भेंट वार्ता बारीकी से सुनने का है, मैंने फिर भी हम बताए दे थे कि जोन किसान भैयाओं ने मूंग को रजिस्ट्रेशन करो है, मूंग को अपने रजिस्ट्रेशन करके रखो है मोबाइल पे और उसे अपन ने खाद उठा लाओ है, तो जब तक मूंग की कटाई नहीं हो रही तब तक अपन सोयाबीन, मक्का, राहर, तिली, रमतिली, उड़दा, मूंग इनको रजिस्ट्रेशन अपन न कर पे हैं जोन किसान भैया ने मूंग उगाए हैं। बाकी जोन के खेत खाली है तो सोयाबीन के लाने और जितनी भी अपनी खरीफ की फसलें हैं वे बिल्कुल उनको एक खाद को रजिस्ट्रेशन कर सके थे। और खाद को रजिस्ट्रेशन कैसे होने सुनने पर है भेंट वार्ता बड़ी बारीकी से, तो ये बात को विशेष ख्याल रखने का। और जोन किसान भैया रे कौन हिसाब से कौन सो खाद कहाँ मिल है सब बातें दई है वे हम बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे, जी वाली बात कहानी। और अब अपन आगे की बात करें कि मोनी को समय कहानो, अबे बिल्कुल न कहानो, मन मन तैयार करने कहानो, तो वो हिसाब की बातचीत अपन को रखने का ही का इसने कि अब खाद दुकान पे जाके न मिल है, मोबाइल के माध्यम से मिल है अपने लाने, तो अब इसे अपन को चला फ्री करने का ही मैंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते का सुन ले भी संदेश।
1: ओहो भाई साहब, फिर खराब हो गया आपकी चक्की का पत्थर।
2: क्या करें बहन जी, ये हर बार की मुसीबत है।
1: डुप्लीकेट पत्थर तो मुसीबत ही है, चक्की का पक्का साथी जोयल पत्थर लाओ और मुसीबत से छुटकारा पाओ। कीमत बढ़ने पर भी आपको मिल रहा है पुरानी कीमत में जोयल पत्थर।
2: जोयल के असली पत्थर के लिए आए ओमरे जी की पुरानी दुकान, ओमरे कॉम्प्लेक्स दुकान नंबर 4 लिंक रोड सागर।
3: साथियों नमस्कार, सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्दन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
0: देखो बहन एक बात बताएं हम आपके लाने, हमने जो ना बात बताई खाद के लाने कि भाई समय से पहले खाद को उठाओ के लाने, अपन को अभी से मन बनाने कहा और जैसी जैसी गुंजाइश हो जाए जो जो खाद अपन को चाहने वो अपन को उठाने पर है। अब बात जा आते कौन सो खाद कहाँ है, अपन को कौन सो चाहने है। ICAR एक संस्था कहानी किसानी से जुड़ी जो पूरे भारत में अध्ययन करत है, तो अपने क्षेत्र में जब बात भेंट वार्ता में कहानी में फिर से हम भेंट वार्ता की
4: चर्चा कर रहे हो कि हमारे किसान भैया हरे खूब ध्यान लगा के सुन ले। तो हमारे सुनील भैया देखो बार बार बता रहे हैं कि कौन नहीं जाने है, ना हमारे घूम रहे हो, सो बैठ जाओ शांति से, ऐसा ही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बात जा कहानी कि भाई अपन को जो देख लेने कहा कि कौन सो खाद चाहने है, मिट्टी परीक्षण के हिसाब से जा चीज रखी गई है कि अपनी जमीन में कौन कौन से उर्वरकों की माने रासायनिक खाद की जरूरत है। देखो बहन कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं, सुनाते हैं संदेश।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: तो सुनील भैया संदेश।

0: के बाद एक बार अपन फिर से स्वागत कर रहे हैं अपने किसान भैया बहनों को। और जैसे कि अपन कह रहे थे कि बढ़िया से लोग गीत भी लेके आए हैं, सो हम सुनवा रहे हैं अपने किसान भैया बहनों को मुस्तफा खान को गाओ जो बढ़िया सो लोकगीत।
1: बिल्कुल बहन, कहा है कि ई विकास पोर्टल पर रासायनिक खाद कैसे लेने हैं जानकारी है बारीक, ध्यान से सुनने कहा है। तो पहले मन को कर ले हल्का, तो जो खान साहब कौन सो लोकगीत सुना रहे अपन सुने लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: सुनो मुस्तफा खान को गाओ भाओ।
1: बहुत अच्छा लोकगीत सुनवा बहन आपने, अब आगे का है?
0: आगे भैया जैसे कि आप बार बार कह रहे थे कि हम बढ़िया सी जानकारी लेके आए हैं, भेंट वार्ता लेके आए हैं, ई विकास पोर्टल से रासायनिक उर्वरक कैसे प्राप्त करें, तो जा जानकारी सुनवा रहे हैं अपने किसान भैया बहनों के लाने। तो अपन तो यही कह रहे हैं बार बार से कि ध्यान से आज की जा जानकारी सुनने कहाई।
1: बड़े सौभाग्य की बात है, आकाशवाणी सागर के स्टूडियो में अपने बीच उपस्थित हैं सहायक संचालक कृषि विभाग से अंकित रावत जी। बहुत ही बहुत स्वागत है आपको अंकित सर। हमारे किसान भैया अपनी किसानी में पूरी तरीके से लगे रहे, खाद्यान्न अच्छा उत्पादन करवे के लाने संतुलित उर्वरकों की तरफ भी जाते हैं वे, ऐसे में अब सरकार की ओर से ई विकास पोर्टल शुरू भाव है, माने टोकन से खाद मिल है, चाहे वह यूरिया हो, डीएपी हो, 12-32-16, 14-35-14, चाहे एसएसपी हो, ग्रोमोर हो। रावत जी, ई विकास पोर्टल का है और इससे खाद हमारे किसान भैया कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में बताएं।
2: सभी किसान भाइयों को नमस्कार, उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो पहले अपने उर्वरक वितरण का प्राचीन प्रणाली चली आ रही थी उसमें कई प्रकार की समस्या से किसान भाइयों को निरंतर जूझना पड़ता था। मध्य प्रदेश अपने पूरे देश का पहला राज्य है जो इस प्रणाली को अडॉप्ट कर रहा है, प्रणाली को 3 अपने जिलों में पहले चला चुके हैं, विदिशा, राजगढ़ और एक और जिला है, उसके पश्चात इसको 15 जनवरी के पश्चात पूरे प्रदेश में लागू है, लेकिन 1 अप्रैल के पश्चात ये आपका 100% ई विकास प्रणाली के माध्यम से ही कृषकों को खाद का वितरण हो रहा है। कि बहुत सरल प्रणाली है, कोई ऐसी जटिल प्रणाली नहीं है
1: जी।
2: आप एमपी कृषि में भी जा देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप साइट की बात करें तो एक साइट है आपकी evikas.mpkrishi.org। तो ई विकास की जैसे ही आप साइट पर जाएंगे, कोई भी किसान जाएगा, को आधार नंबर आपका आपको पता होना चाहिए और आपका जो रजिस्टर मोबाइल है वो आपके पास होना चाहिए जिसपे ओटीपी आता है
1: जी।
2: तो ई विकास अकेला भी बोलोगे सीधा गूगल इसको ही दे देता है
1: जी।
2: गूगल में जाके ये आप टाइप करेंगे तो आप पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप पोर्टल पे पहुंचेंगे सबसे पहले होम पेज पे आधार नंबर ही आएगा, आपका आधार नंबर डाला, कैप्चा डाला, जैसे ही आपने सबमिट करा तो जो आपका पंजीकृत मोबाइल है उस पे आ जाता है ओटीपी। आपने उस ओटीपी को डाला तो आप ई विकास पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो गया। एग्रीस्टेक पोर्टल पे जो भी आपका भूमि का जो रकबा होगा वो आपको प्रदर्शित होने लगेगा, तो वो रकबा आपको दिखने लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी कारण से हमारा रकबा एग्रीस्टेक पोर्टल पे रजिस्टर नहीं है तो हमें ये वाली प्रणाली का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि सबसे पहले वो अपने निकटतम जो पटवारी है आपके हलके के उन पटवारियों से संपर्क कर सकता है और जो कृषि विभाग के मैदानी अमले उनसे संपर्क कर सकता है, पंचायत विभाग के आपके रोजगार सहायक हैं, सचिव हैं, उनसे संपर्क कर सकता है। सब लोगों को इस पोर्टल के बारे में प्रशिक्षित किया जा चुका है। सारे खसरा एग्रीस्टेक पोर्टल पे जुड़वा लें, लॉगिन तो आपने कर लिया, आपकी व्यक्तिगत जानकारी सारी दिखने लगेगी, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, ग्राम क्या है, या टोकन बुक करना चाहते हैं उनकी जानकारी आप व्हाट्सएप पे प्राप्त करना चाहते हैं तो उस विकल्प में आप हाँ चुनेंगे, जो भी आपका टोकन जनरेट होगा या इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपके व्हाट्सएप पे भी आने लगेगी। जो आप एग्रीस्टेक पे अपनी जितनी भूमि है भूमि उसमें प्रदर्शित होने लगेगी। फर्ज करिए आपका रकबा 10 एकड़ का, आपका 3 एकड़ दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका 3 एकड़ का खसरा जुड़ा हुआ है लेकिन हमारे किसान भाइयों का 7 एकड़ का खसरा उसमें नहीं जुड़ा है। कि अगर आप 10 एकड़ जुड़वा लेंगे तो आपको 10 एकड़ की खाद मिलेगी, लेकिन अगर आपने 3 एकड़ ही जुड़वा रखा तो जहां खाद आपको 10 एकड़ की मिलनी चाहिए थी उसके स्थान पे 3 एकड़ की खाद मिलेगी। तो अपना एग्रीस्टेक पोर्टल पे अपना जो भी किसान भाई हैं पटवारियों से संपर्क करके, कृषि विभाग के मैदानी अमला संपर्क करके, रोजगार सहायक सचिव
1: कही जाए कि खाद लेवे के लाने पहलो कदम कहानो कि एग्रीस्टेक के पोर्टल पे अपनी पूरी जमीन को पंजीयन भाव चाहिए।
2: हाँ, यानी एग्रीस्टेक पोर्टल पे अपने संपूर्ण खसरे जुड़े हुए होने चाहिए। अगर हमारा एग्रीस्टेक पे हमारे खसरे नहीं जुड़े हैं तो आप ये मान के चलिए वो एग्रीस्टेक वाला सारा डाटा उठाता है
1: जी,
2: तो उस केस में हमें उर्वरक कम प्राप्त हो पा रहा है, है ना, हमको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि एग्रीस्टेक पोर्टल पे अपना वो खसरा जुड़वाएं और अगर मान लो अपना समय सीमा में अगर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो संबंधित पटवारी संपर्क करके अपन उसको करवा लें।
1: पहला कदम ये हो गया रावत जी, और ओके बाद फिर ई विकास पोर्टल पे खाद कैसे लेने जा अपन को देखने का है, तो जो फिर कैसे देखें अपन कैसे आगे बढ़े कि अपन खाद कौन सी खरीदने, कितनी खाद कहाँ मिल रही है।
2: जी अच्छा प्रश्न है आपका। और जैसे अपन ने आधार ओटीपी से लॉगिन हुआ, अपनी बेसिक जानकारी दिखने लगी, उसके पश्चात उसमें ये विकल्प आ गया कि जानकारी आप अपने मोबाइल नंबर पे चाहते हैं तो अपन ने मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करी, जानकारी आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो व्हाट्सएप की प्रविष्टि करी। फिर उसके बाद उसमें दिखता है एग्री स्टेक पोर्टल भूमि की स्थिति, तो जैसे अपन उस पर क्लिक करेंगे तो अपने पोर्टल पे जितनी भूमि अपनी रजिस्टर है एग्री स्टेक पोर्टल पे, अगर नहीं है तो नहीं दिखेगी, उसमें अपने वो करना पड़ेगा। उधर एक हाइपरलिंक भी है, जिन किसानों की नहीं है वो जाके वहां से वो कर सकता है, लेकिन बशर्ते ये है कि उसको हमको वेरिफिकेशन करवाने के लिए राजस्व विभाग से संपर्क करके हमें वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ये अपन ने कर लिया। फिर अपने भूमि की जानकारी आ गई, उसमें अगला विकल्प अपने को ये दिखता है क्या हमारे किसान भाई सहकारी समिति के सदस्य हैं, तो जो हमारे किसान भाई सहकारी समिति के सदस्य हैं वो उसमें हाँ का विकल्प चुन सकते हैं, और जो नहीं है वो नहीं का विकल्प चुनेंगे। अगर आप हाँ का विकल्प चुनते हैं तो जो आपकी सहकारी समिति रहती है, ऐसा नहीं कि केवल आप समिति से कर सकते हैं, की बाध्यता नहीं है, आप समिति से भी कर सकते हैं, और समिति के अतिरिक्त आप प्राइवेट डीलर हैं उनसे भी खाद प्राप्त कर सकते हैं, आप डबल लॉक सेंटर है उनसे भी खाद प्राप्त कर सकते हैं, आप एमपी एग्रो के जो गोदाम है वहां से भी खाद प्राप्त कर सकते हैं। अपना ये विकल्प का अपन चयन कर लिया, अपने को वो पता चल गया कि हम दोनों जगह से खाद का उठाव कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद अपन जैसे ही आगे बढ़ेंगे भूमि निकल आएगी कि आपकी इतनी इतनी भूमि है। आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको अपन सरल भाषा में बोले जो हमारे कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है, उनके द्वारा जो हमारे क्षेत्र में, क्षेत्र हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर जगह की उर्वरक शक्ति अलग अलग है।
1: जी।
2: कहीं पे आप भूमि में नाइट्रोजन का स्टेटस ज्यादा मिलेगा आपको, कहीं फॉस्फोरस का कम मिलेगा, कहीं पोटास का मिलेगा।
1: एक हेक्टेयर में खाद कितना मिले या पर एकड़ के हिसाब से खाद की बोरी मिले, फसल के हिसाब से भी मिले, सोयाबीन बो रहा है तो जो खाद मिले
2: जी, जी, जी, जी।
1: और अगर अपन मूंग उड़द की बोनी कर रहा है या राहर की बोनी कर रहा है तो इनके हिसाब से खाद मिले, फसल भरेंगे उस हिसाब से खाद मिलेगी।
2: जो आपके मन में प्रश्न है
1: जी जी जी जी,
2: वर्तमान जो ई पोर्टल में जो व्यवस्था है
1: जी,
2: उसमें आपका भूमि का विकल्प आ गया, आपका पूरा भूमि का रिकॉर्ड प्रदर्शित होने लगा। उसके बाद हमारे किसान भाइयों को ये विकल्प दिया जाता है कि आप अपना फसलों का चयन करें
1: जी।
2: जो हमारे किसान भाई सोयाबीन लगाना चाहते हैं वो सोयाबीन फसल का चयन करेंगे, जो किसान भाई हमारा धान लगाना चाहते हैं वो धान का चयन करेंगे, जो किसान भाई हमारा जो सब्जी लगाना चाहते हैं उस सब्जी का चयन करेंगे, और चयन करने के उपरांत आपके जितना खसरा है या जितना रकबा है, रकबे के हिसाब से नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, कितना पोषक तत्व के रूप में आपके खेत में नाइट्रोजन चाहिए उस फसल के हिसाब से, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटास चाहिए, उसकी गणना होके प्रदर्शित होने लगेगी। ये आपका गणना होके प्रदर्शित होने लगा तो किसान भाइयों को पता चल गया कि अगर मान लो हमारा 2 एकड़ का खेत है तो उसमें कितना नाइट्रोजन लग रहा है फसल के हिसाब से, कितना फास्फोरस लग रहा है और कितना पोटास लग रहा है, यानी संतुलित उर्वरक का भी किसान भाइयों को पता चल गया। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े तो उसमें आपका खाद प्राप्ति के विकल्प चुनेंगे, ये गणना होके आ गई है एनपीके की, तो उस हिसाब से फिर आप चूज करेंगे कि आप जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की पूर्ति आपको यूरिया से करनी है कि नाइट्रोजन की पूर्ति आपको एनपीके से करनी है,
1: जी, जी,
2: है ना। तो वहां पूरे आपके उर्वरक के विकल्प खुलेंगे, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, है ना, एमओपी हो गया, और जो कॉम्प्लेक्स में 20-20-0-13 आता है, और भी सारे आपका
1: 14-35-14 है, हाँ, जितने भी है
2: सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर, वो सारे विकल्प आपको दिखने लगेंगे। दिखेंगे केवल आपको शुरुआत में यूरिया, एनपीके जो आप बात कर रहे हैं ना, एनपीके में बहुत सारे उर्वरक आ जाते हैं, तो जब आप एनपीके का चयन करेंगे तो सारे उर्वरक दिखेंगे। बाकी अगर फिर जैसे ही आप देंगे तो उसमें आपका ये प्रदर्शित होगा कि आपने डीएपी का चयन करा, पहले आपका जो अनुशंसित मात्रा जो निकल चुकी है आपके खेत की, उस हिसाब से आपको मैक्सिमम कितने डीएपी की बोरी की आवश्यकता रहेगी, उसमें दिखने लगेगा
1: जी, जी,
2: कि आपको 5 बोरी तक आपको पात्रता आ रही है, आपको 5 बोरी मिलेगी, या आप यूरिया में जाएंगे तो उन्हें का हो सकता है आपकी 8 बोरी की पात्रता आ रही है, तो जब यूरिया का विकल्प चुनेंगे तो आपको 8 बोरी प्रदर्शित होगी
1: जी।
2: अब फर्ज करिए हमारे किसान भाई, सबका आर्थिक स्तर ऐसा नहीं रहता है कि वो उसी टाइम पूरी खाद खरीद सके, तो उसमें यह भी विकल्प है कि आपकी यूरिया दिख रही है 8 बोरी
1: जी,
2: लेकिन आप चाहना चाहते हैं केवल 3 बोरी, आपके पास जो वर्तमान व्यवस्था है केवल 3 बोरी की है, तो उसका अगला कॉलम ये दिखता है कि आप कितनी बोरी प्राप्त करना चाहते हैं।
1: ठीक।
2: अगर आपके पास 8 बोरी आपको दिख रही है यूरिया की, और आपके पास पूंजी की व्यवस्था इतनी है कि आप डीएपी की 3 बोरी ले सकते हैं पात्रता अनुसार, लेकिन यूरिया की 8 बोरी की पात्रता आ रही है, तो उसमें से आपको केवल 3 बोरी आप लेने में सक्षम है, तो केवल आप 3 बोरी का चयन कर सकते हैं।
1: 5 बोरी
2: दोबारा ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ले नहीं सकते। जब अगली बार आप पोर्टल पे जाओगे तो यूरिया आपको 5 ही बोरी दिखेगी, क्योंकि 3 बोरी आप ले चुके फिर अगली बार फिर आपने 3 बोरी ले लिया आवश्यकता के अनुरूप, फिर आप पोर्टल पे जाओगे तो 2 बोरी दिख रही है, आप 2 बोरी भी ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आपने अपना खाद का चयन किया। खाद का चयन जैसे ही आप करेंगे उसके उपरांत आप करेंगे अपने विकासखंड का चयन कि आप कहां से खाद लेना चाहते हैं। जैसे मान लो सागर का किसान है, सागर विकासखंड से लेना चाहता है, या हो सकता है वो बंडा से लेना चाहता है, हो सकता है वो रहली विकासखंड से लेना चाहता है, तो अपना विकासखंड का चयन करेगा। जैसे ही वो विकासखंड का चयन करेगा अगले ही कॉलम में ये प्रदर्शित होगा कि जो आपने उर्वरक का चयन किया है वो उस विकास खंड में किन किन संस्थानों के पास उपलब्ध है, यानी उसका स्टॉक कहाँ कहाँ उपलब्ध है। जैसे आपने रहली का चूज करा है आपका डीएपी के लिए, रहली डीएपी आपका डबल लॉक सेंटर में भी है, डीएपी आपके निजी विक्रेताओं के पास भी उपलब्ध है और भी अन्य संस्थाओं के पास उपलब्ध है, तो आपको दिखने लगेगा कि कौन सी संस्था के पास डीएपी अवेलेबल है,
1: तो आपने से अपन को खरीद,
2: हाँ तो अपन ने वो संस्था का चूज करा। उसके बाद वो ये मांगता है उर्वरक प्राप्ति की दिनांक, उसमें 2 दिनांक खुलती है, आज की और कल की, यानी ये टोकन जनरेट करने की दिनांक है, यानी इसमें आप आज खाद लेना चाहते हो या कल लेना चाहते हो। पोर्टल में 2 दिन की व्यवस्था है वर्तमान में, आप अपने समय के अनुरूप, अगर आपके पास आज समय नहीं है तो आप कल कर सकते हैं। और बात आती है टोकन की वैधता की, तो टोकन की जो वैधता रहती है वो 3 दिवस की रहती है, 72 घंटा या 3 दिवस,
1: मतलब टोकन अपन ने जनरेट कर लिया मोबाइल के अंदर और 3 दिन के अंदर जहां जिस भी दुकान का रजिस्ट्रेशन अपन ने करा है वहां से जाके अपन उठा सकते
2: हैं। आपने व्हाट्सएप वाला विकल्प चुना है, आपको प्रिंट लेने की भी जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे आपके कूपन आ गया है, वो आप कूपन ले जाइए, जोन सी संस्था का आपने चयन किया है उस चयन के पास आप ले जाइए अपना मोबाइल, कूपन उसको बताइए कि ये हमारा कूपन है, वो संस्था वाले के पास स्टॉक के आधार पे आपकी खाद बुक की हुई है, यानी उस व्यक्ति के पास स्टॉक है इसलिए आपका कूपन जनरेट हुआ है, तो वो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप तो अपना मोबाइल लेके जाएं, कूपन स्कैन करें और खाद प्राप्त करें।
1: 72 घंटे को समय है
2: जी,
1: वो किसी कारणवश 72 घंटे में उनने अगर अपनी जितनी बोरी रजिस्ट्रेशन कर ली थी वे नहीं ले पा रहे हैं, तो वो में कोई तरीका कहा हो कि बाद में आ जाके फिर से रजिस्ट्रेशन करके भी उठा सकें, या कोई और तरीका हो किसी ऑफिस में जाना पड़े।
2: रास्ता ये है कि अगर 72 घंटे में हमारे किसान भाई खाद प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, आपका कूपन लैप्स हो जाएगा बस।
1: अच्छा,
2: यानी कूपन की वैधता समाप्त हुई तो उस कूपन से आप खाद नहीं ले पाओगे। अच्छा, अभी आपका कूपन एक्सपायर हो गया है मानिए, आप खाद नहीं ले पाए, कई कारण हो सकते हैं, तो आप उसको अगले पली उसको दो, पुनः कूपन बुक कर लें, फिर वही प्रक्रिया आएगी, जिसके पास उपलब्ध रहेगा आप जाके वहां से ले सकते हैं। उसके अलावा राय साहब, एक किसान भाइयों को और मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि फील्ड में ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है, कभी कभी क्या होता है कि किसान की जितनी आपकी पात्रता आ रही है ना, तो पात्रता से अधिक भी किसान आपका उर्वरक प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसमें ये चीज रहती है कि आपका पोर्टल जो रहेगा वो आपसे पूछेगा कि आपके लिए खाद की आवश्यकता है, मान लीजिए 2 बोरी यूरिया की, 2 बोरी के बाद आपने 2 बोरी क्यों मांगी
1: जी,
2: तो उसमें आपको डिटेल में देना पड़ेगा सब चीज पोर्टल में। जैसे ही आप करोगे ना वो बता देगा कि आपका कोटा हो चुका है, उसके अतिरिक्त भी आप लेना चाहते हैं, आप बोलेंगे हाँ, तो उसमें आपको उसकी जानकारी देनी पड़ेगी, और वो जानकारी आप दोगे उसका सत्यापन भी हो सकता है। तो एक किसान भाई ऐसा ना करें कि हम अधिक ले लेके रख लें, क्योंकि उसका सतत सत्यापन भी होता जाएगा, तो जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ले सकें। फर्ज करिए कि अगर मान लीजिए कुछ हमें खाद की कम पड़ रही है, या हमारी फसल कभी ऐसी स्थिति हुई कि हमारी फसल ने कि हमने बोनी करी और हमको पुनः बोनी करने की आवश्यकता हो रही है, तो उस स्थिति में भी किसान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में कभी कभी ऐसा होता है एक बार आपका फसल नहीं जमी, किसानों को दोबारा भी बोनी करनी पड़ जाती है, उन किसानों को भी मिलेगी, लेकिन उसमें आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा।
1: व्यवहार रूप में भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
2: हाँ, भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ओवरऑल ये किसान हितैषी है सारा काम, किसानों के लिए ही जितनी भी चीजें बनी है वर्तमान में, सारी जो भी समस्या किसानों को आती है और किसानों की समस्या से निजात पाने के लिए ही छोटे छोटे पहलू पे अध्ययन करने के उपरांत इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं।
1: बिल्कुल ठीक है राज जी। अब अंत में बात आते हैं कि जो किसान भैया रहे उनको अब नामांतरण नहीं हो पावे, या सिकमी कृषक हो गए, या वन पट्टा जो लय है किसान भैया, वे खाद कैसे प्राप्त करें?
2: ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे हमारे किसान भाई जिनका राजस्व पट्टा है, जिनका वन पट्टा है ना, जो वृद्ध किसान है, या जो किसान ऐसे हैं कि जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनका नामांतरण नहीं हो पाया, नामांतरण प्रक्रियाधीन है
1: जी,
2: है ना, ऐसे किसान जो आपका सिकमी पे खेती करते हैं, ऐसे किसान जो वृद्ध किसान हैं, या ऐसे किसान मंदिर की या ट्रस्ट की जो भूमि रहती है उन पे खेती करते हैं, उन किसानों के लिए भी पोर्टल पे विकल्प है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो उसमें दिखेगा जहां पे अपन ओटीपी से उसको पंजीयन करते हैं वहीं पे ये वाला विकल्प भी आपको दिख जाएगा जो आपने बताया, वन पट्टा, राजस्व पट्टा, मत किसान जिन जो सिकमी कर रहे हैं, जो वृद्ध किसान है
1: जी, जी।
2: और आधार से पंजीयन होने के बाद जो भी उनकी भूमि की जानकारी है आपको सारी जानकारी की प्रविष्टि करनी पड़ेगी। मृत किसान की स्थिति में वहां पे कुछ बेसिक जानकारी पूछेंगे कि आपके बुजुर्ग जब एक्सपायर हुए हैं तो उनका आपका है डेथ सर्टिफिकेट, उसमें अटैच होता है, उसमें डेट डलती है कि जितनी भी जो डेट डली है डेट

0: जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
0: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिंह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 9 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आपकी रेडियो साथी अदिति के साथ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं, फरमाइशकर्ताओं के नाम आपसे पहले साझा कर रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर SMS द्वारा फरमाइशें भेजी हैं। छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला आसमा, दीपक और अनुश्री। पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप। मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान, जीवियम और आदि जैन। राजस्थान से रज्जत मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। छत्तीसगढ़ भिलाई से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा। और पिपरिया जिला कबीर धाम से कमल कांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं जानवर फिल्म से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में गीत। समीर का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत आनंद मिलन।

0: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: श्रोताओं कार्यक्रम के अंतर्गत अब अगली फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट द्वारा भेजी है। ग्राम पनारी पोस्ट महाराजपुर सागर से परमलाल विश्वकर्मा, दशरथ, मनोज, पूना, आरती विश्वकर्मा, दीपेश, जागृति, मानवी, हर्षिता विश्वकर्मा। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजत, लालू, सोना मोना, हनी, यश और इनके परिवार के सदस्य। कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक

करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवणे। पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल और सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार, उदित नारायण और सोनू निगम की आवाज़ों में गीत। समीर का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत जतिन ललित का है, फिल्म का नाम है कभी खुशी।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना कभी खुशी कभी गम फिल्म से। कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश। फरमाइशकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं, व्हाट्सएप पर आप सभी ने टेक्स्ट भेजे हैं। अंबिका प्रसाद, विवेक कुमार, वीरेंद्र कुमार, कार्तिक चौरसिया, नैवेद्य चौरसिया, कुंदन लाल चौरसिया सागर से। महाराष्ट्र से गंगाधर येमिकर, प्रमोद और प्रदीप। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोडाना। भवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, प्रियांश और भाव्या देवांगन।

गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल और प्रियांशी, राजस्थान से धर्मेंद्र चींपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत राजेश रोशन का है, फिल्म का नाम

में समय को ध्यान में रखते हुए एक और फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, तपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत पंजाब बठिंडा से, पीहू कान्हा, सृष्टि राम, मोहिनी, पूजा, पवन, गगन, खुशबू दमोह से, दिल्ली से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके सभी साथी। आप सभी की फरमाइश है उदित नारायण की आवाज में ये गीत, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत निखिल विनय का है, फिल्म कुछ दिल ने कहा से है।

0: और श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मनचाहे गीत को हम कर रहे हैं संपन्न। दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 9:30 होने को हैं, बस कुछ ही पलों का इंतजार कीजिएगा और आप सुन सकेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: ये है विविध भारती।
2: आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोकरंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हारी भोली

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अलीबाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

प्यार झरना है और इस निर्झर में बह जाता है हमारा मन। नहीं रोक पाते हम प्रेम के निर्झर को, वो बहता जाता है जहां तक धरती है वहां तक है प्यार का आलम।

कतरा कतरा भीगता है मन, बूंद बूंद बरसती हैं यादें, हर्फ हर्फ झरते हैं ख्वाबों के नूर, मीलों भटकता है मन बेसबब, खोई खोई आंखें, बहका बहका ख्याल और सदी तक मोहब्बत पर कायम रहने वाले लोग।

तेज रफ्तार जिंदगी पर एक रोज विराम लग गया। गहराई घटाएं, काले मेघ डर का साया बन गए। हरे नरम दूब सूखे पत्तों में तब्दील हो गए। किताब का एक ही पन्ना अलग अलग लाइनों में बदल गया। नाजुक नर्म अल्फाज ने आंखों में सैलाब भर दिया।

आज मन की नोटबुक में लिखे हैं कुछ गुलाबी शब्द, कुछ सुर, सप्तक, आरोह अवरोह और गुनगुनाया है प्रेम गीत। लिखा है खामोश अफसाना, पर शोर के इस दौर में कौन सुनता है खामोशी की सदा।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। न रहा अब अपने पास वो दिल का खजाना जिससे रोशन होते थे अपने ख्वाब, जब पूरी कायनात अपनी सी लगती थी, जब हर सुबह हरे रंग के कोपल खिलते थे, खिले हुए गुलाब को देखकर मुस्कुराकर बतकही चढ़ती थी। सब कुछ तो है पर नहीं है बहुत कुछ जिसकी है चाहत।

मोहब्बत एक कहानी है, एक राग है मोहब्बत, एक छंद है, एक कविता है मोहब्बत। मोहब्बत इबादत है, जो लिखता है मोहब्बत अपने जिंदगी में वो नफरत के चिंगारी से दूर हो जाता है। जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है वो सिर्फ खुशियों के रंग में डूब जाता है। जिसे मिलती है किसी की बेपनाह मोहब्बत वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झोंके चले

चीज थी मिला के नजर

0: رات.
1: हमारा प्रसारण आप सुन रहे
2: हैं। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक

0: वो नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support.